देखिए अभी कुछ दिनों से तो मुझे महसूस हो रहा है कि यार अब और अच्छे वाले दिन हमारी जिंदगी में आने वाले हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम, सिंपली आफरीन जुड़ गई है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इट इज अ सैटरडे मॉर्निंग और सैटरडे कुछ लोगों के लिए अब भी वीकेंड होता है, हालांकि कुछ के लिए इट इज नॉट अ वीकेंड, इट्स अ रेगुलर डे। और अगर आपके लिए इट इज अ रेगुलर डे देन ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा और गुडी गुडी मॉर्निंग आपके लिए विशेष है क्योंकि आपको आज के दिन बहुत मेहनत करनी है ना माय बंधु। सो बस आपका सफ़र जो है, दिन का सफ़र आसान करेंगे शुरुआत से। वो कहते हैं ना, हर चीज़ की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरी चीज़ यानी आपका सारा दिन भी अच्छा ही गुजरेगा। और साथ अगर मेरा हो यानी सिंपली आफरीन का हो, ज़बरदस्त से गाने लाइन अप कमिंग अप नेक्स्ट और कतर की बातें, सब कुछ मिक्स एंड बेस्ट ऑफ द वीक। That's what a Saturday calls for. So well, with this, मैं हूँ आफरीन, राइटर ऑन मिर्ची, ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।

0: Hey. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
1: Hello,
2: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
1: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
1: हाँ जी.
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
1: किसी की पता नहीं किसकी थी
2: ना. आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
1: मैंने क्या किया
2: था? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है, आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
1: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
1: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में, आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
1: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई है.
2: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
1: है, मत सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
2: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ पे श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
1: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
2: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
1: हाँ बताइए
2: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
1: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे
1: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट, इट्स पटाक.
4: खटखट,
5: हु देयर?
4: बनता.
5: बनता हूँ.
4: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को.
5: खटखट, हु देयर?
3: ओनली ऑन.
1: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट, इट्स पटाक.
4: खटखट,
5: हु देयर?
4: बनता.
5: बनता हूँ.
4: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को.
5: खटखट, हु देयर?

0: देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट एआई, व्हाट वी इमेजिन, हम चैट जीपीटी को जानते हैं, बेसिकली एक स्क्रीन के अंदर बैठा हुआ असिस्टेंट. बट अब एआई धीरे धीरे स्क्रीन से निकलकर एक्चुअल पब्लिक स्पेसेस में आकर खड़ा हो गया है. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरी. को एआई एक्चुअली रस्ते पर खड़ा मिलेगा आपको, और वो भी कहाँ पता है? मुशर्रफ डाउनटाउन में. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? सो लेट मी टेल यू, मुशर्रफ डाउनटाउन दोहा में आपको मिलेंगे राशिद. इनका नाम राशिद है, एंड एआई पावर्ड डिजिटल कॉन्सियर्ज. राशिद 15 इंटरैक्टिव स्मार्ट कियोस्क पर अवेलेबल है 24/7. आप उससे डायरेक्शंस पूछ सकते हैं, रेस्टोरेंट्स फाइंड कर सकते हैं, अपकमिंग इवेंट्स चेक और बुक कर सकते हैं, डाइनिंग रिजर्वेशंस में भी हेल्प ले सकते हैं, एंड इवन पार्किंग फी पेमेंट तक कर सकते हैं राशिद की हेल्प के साथ. एंड यू नो व्हाट वन इंटरेस्टिंग local touch to this is that Rashid uses Fanar, Qatar's Arabic large language model, and there's even a holographic version of the technology. So AI ka next chapter shayad sirf ask me anything nahi hai, it's becoming where do you want to go, what do you want to book, and shall I help you do it, and ye sab kuch Rashid ke zariye, matlab aisa ek public spaces par aapko ye screens aur ye sari cheeze milegi to interact with Rashid. Agar this weekend you are planning to go to Mushrib downtown, then zarur try kariyega, and then let me know. Theek hai, mic se dil तक आफरीन है और मिर्ची इज हॉट.
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार.
2: सही है, सही है.

0: देखो जी, इस साल के एशियन गेम्स में खाता तो अपना खुल गया है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और आज की बड़ी खबर में
1: क्या खबर
0: है खेल जगत से, जहां पर कतर ने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीत लिया है। अब डिटेल में आपको बता दूं तो टीम कतर्स अब्दुल रहमान मुस्तफा हैज वन द कंट्रीज फर्स्ट मेडल एट द आईची नगोया 2026 एशियन गेम्स इन जापान। क्या बात है, और ये जो है इनको मिला है मेंस अंडर 60 kg कराटे क्यूबिट इवेंट। वेल, अगर इनकी जर्नी की बात करें तो जर्नी टू द फाइनल वाज एक्चुअली प्रीटी इम्प्रेसिव। राउंड ऑफ 16 में ही डिफीटेड उज़्बेकिस्तान, उसके बाद में क्वार्टर फाइनल में वियतनाम को, वो भी 10-4 से, एंड देन अ वेरी कन्विंसिंग सेमीफाइनल 7-1 से इन्होंने मलेशिया को हराया। उसके बाद में फाइनल में जाकर कुवैत के अब्दुल्ला शाबान टुक द गोल्ड, वाइल अब्दुल रहमान फ्रॉम कतर ही बॉट द सिल्वर होम। बट हियर्स अनदर नाइस डिटेल कि अर्लियर दिस मंथ अब्दुल रहमान ने ऑलरेडी एक गोल्ड जीता है अंडर 21 एशियन कराटे चैंपियनशिप। सो लेट मी टेल यू, ही इज हैविंग अ क्वाइट अ सितंबर, एंड दिस सिल्वर इज एस्पेशली सिग्निफिकेंट बिकॉज इट पुट्स कतर ऑफिशियली ऑन द मेडल टेबल एट दीज एशियन गेम्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अब्दुल रहमान एंड टीम कतर। फर्स्ट मेडल तो देखो बॉस आ गया है, एंड होपफुली अब ये जो पोडियम का सिलसिला है जाने का वहां वो शुरू हो जाए इसके साथ। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
8: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

वेल देखिए, अगर आप वो कैटेगरी में बिलोंग करते हो जहाँ पर आप कतर से इंडिया, इंडिया से कतर बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, देन दिस न्यूज इज डेफिनेटली फॉर यू। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और देखिए, खबर कुछ ऐसी है कि हम कुछ दिन पहले ना हमने कतर के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फास्ट पास की बात की थी, जहां फेशियल रिकग्निशन के थ्रू एलिजिबल पैसेंजर्स जो हैं एयरपोर्ट के कुछ चेक पॉइंट्स को और भी ज्यादा सीमलेसली क्रॉस कर सकते हैं, है ना। वेल, अब इंडिया में भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए कुछ सिमिलर प्रोसेस टेस्ट होने जा रही है। वेल, इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू ट्रायल डिजी यात्रा फॉर इंटरनेशनल डिपार्चर्स बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, इनिशियली दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड कोची एयरपोर्ट। डिजी यात्रा डोमेस्टिक ट्रैवल में ऑलरेडी यूज हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो योर फेस बिकम्स योर डिजिटल आइडेंटिटी एट सर्टेन एयरपोर्ट चेक पॉइंट्स। तो वो जो बार बार बोर्डिंग पास निकालो, डॉक्यूमेंट्स निकालो, पासपोर्ट निकालो, और उसके बाद जो मिनी हार्ट अटैक आता है ना, अरे पासपोर्ट कहाँ रख लिया, कहाँ है तो सही साथ में, ये तो दिस इज वेरी कॉमन, ये मेरे साथ तो डेफिनेटली होता ही है। तो ये थोड़ा सा शायद स्ट्रेस कम हो जाएगा। वेल, इंटरनेशनल इनिशियली टर्मिनल एंट्री और सिक्योरिटी जैसे चेक पॉइंट्स पर फोकस करेगा, एंड इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है दैट इमिग्रेशन नॉर्मल प्रोसेस से ही होने वाला है, एंड पासपोर्ट इज स्टिल कंपल्सरी। दिस डज नॉट एलिमिनेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पासपोर्ट फॉर ऑब्वियस रीजन, राइट। देयर इज ऑल्सो एन ई पासपोर्ट इंटीग्रेशन बींग एक्सप्लोर्ड, वेयर द पासपोर्ट्स एम्बेडेड चिप कैन हेल्प क्रिएट एंड वेरीफाई योर डिजिटल ट्रैवल आइडेंटिटी। सो कतर में फास्ट पास, इंडिया में डिजी यात्रा, फ्रीक्वेंट इंडिया ट्रैवलर्स के लिए एयरपोर्ट जर्नी जो है ग्रेजुअली काफी सीमलेस होते जा रही है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: आई लाइक दैट सॉन्ग।

0: फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन.
5: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है.
4: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं. फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं. बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
5: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो.
6: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

वेल आप इसे क्रिएटिव रिस्क कहेंगे या गैम्बल कहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखिए हम 90s के टाइम पर ना एक बात थी कि जब फैमिली मूवी का मतलब जेन्युइनली पूरी फैमिली के साथ मूवी देखना होता था. नो ऑकवर्ड सीन्स, नो रिमोट ढूंढने की जरूरत, बस शादियां, गाने, फैमिली ड्रामा और वो एक बड़ा सा घर जिसे पता नहीं कितने सारे लोग रहते थे. एंड जहां फैमिली फिल्म्स की बात हो रही है ना, तो सूरज बरजाटी और राजश्री फिल्म्स ऐसे याद ना आए, इट्स नॉट पॉसिबल राइट. एंड मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, अब भी हूँ. हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, न जाने मैंने कितनी बार देखे, 50-100 बार देखे हैं. ऑफ कोर्स दैट आइकॉनिक प्रेम, बट समवेयर आई फील ओवर द इयर्स ना कि ये जो वार्म सिंपल फैमिली ओरिएंटेड बॉलीवुड स्पेस है ना, वो तो ऑफ कोर्स कम होते गया है. एंड नाउ एक ऐसा रिस्क लेकर आए हैं सूरज बरजाटिया, जहां उन्होंने प्रेम को वापस लाया है. बट नॉट आर सलमान खान वाला प्रेम, दिस टाइम इट इज आयुष्मान खुराना. फिल्म का नाम है ये प्रेम मोल लिया, अपोजिट टू हिम इज शर्वर, वही शर्वरी जो मस्कारा, हाय मस्कारा, मैं वापस आऊंगा से. एंड म्यूजिक इज बाय हिमेश रेशमिया एंड इज बीइंग पोजिशन्ड एज अ बिग स्क्रीन फैमिली एंटरटेनर. ये मूवी रिलीज होने वाली है थिएटर में 27 नवंबर को, और इसका जो टाइटल ट्रैक है हाल ही में रिलीज हो चुका है. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, डू यू रियली थिंक दैट दिस इज अ गैम्बल? जेन जी ऑडियंस को राजश्री स्टाइल फैमिली ओरिएंटेड मूवीज क्या पसंद आएगी? बड़ा रिस्क है. लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, क्या आप ये मूवी जाकर थिएटर में देखोगे? मैं तो जरूर जाऊंगी, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया यार. लेट मी नो 5001896 पर आप जाकर ये मूवी थिएटर में देखोगे या नहीं.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La
1: fiat la burka. Milci, burka. Hello.
2: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर, दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाँ।

0: करने लगा।
1: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाएं 5,07,339। हो गया।
0: हाँ जी।
1: कुकड़ों को
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
6: Cut, cut!
7: Who that?
6: Zahir!
7: Zahir! Zahir who?
6: Zahir si baat hai, main hi hu, aur koi nahi.
7: Cut,
2: who that? Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखो, ट्रैफिक फाइन चेक करना हो, रेसिडेंसी रिलेटेड कुछ काम हो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन का काम हो, और कई सारे काम जो होते हैं हम सभी के एक ऐप पर होता है, एंड दैट इज मेट्रैश ऐप. और कितना ज्यादा वाइडली यूज ऐप है ये राइट अक्रॉस कतर. वेल, कुछ नए आंकड़े सामने आए हैं मेट्रैश से जुड़े हुए जो मैं बताना चाहूंगी. दैट फ्रेश नंबर्स फ्रॉम कतर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से दैट मेट्रैश नाउ हैज मोर देन 2.8 million active users over 500 different services in 6 languages and more than 10 million transactions are processed through it every year. मतलब सोचिए कि ये एक ऐप है जो कितना सारा काम कर रहा है. एंड 500 सर्विसेज सुन के मुझे भी लगा कि अच्छा, मैं तो इसके प्रोबेबली लाइक 5-6 सर्विसेज भी शायद यूज नहीं करती होंगी. बट मेट्रैश में आप रेसिडेंसी परमिट इशू, रिन्यू या कैंसिल करने हैं से लेकर एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैफिक साइट पर वायलेशंस देखने हैं और पे करने हैं, वायलेशंस की फोटोग्राफ अगर चेक करनी है, व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, ड्राइविंग टेस्ट अपॉइंटमेंट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल हो गया, इवन ट्रैफिक एक्सीडेंट रजिस्ट्रेशन तक अवेलेबल है. और कई सारी सर्विसेज है देखा जाए तो. ट्रैवल कर रहे हैं तो रेसिडेंट रिटर्न परमिट और अबू समरा बॉर्डर से रोड ट्रिप के लिए व्हीकल मूवमेंट प्री रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है. फिर नेशनल एड्रेस अपडेट करना हो, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन चेंज करना हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कितनी सारी चीजें एक बस एक ऐप हमारा कर देता है. एंड एक यूजफुल लिटिल फीचर जो है, जो सर्विसेज आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो ना, उस पर उन्हें आप फेवरेट्स में सेव भी कर सकते हैं. सो नेक्स्ट टाइम कोई ऑफिशियल काम आए और फर्स्ट थॉट हो कि अरे यार, इसके लिए तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, देन पहले मेट्रैश खोलो, उसमें सर्च करो. डेफिनेटली हमारे कतर के मैक्सिमम काम मेट्रैश पे ही कंप्लीट होते हैं. मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक राइट ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

वेल, कतर में रहते हुए सभी के फोन में एक ऐसा ऐप है जो कॉमन है और हमारे सबसे काम का है, उसके बारे में बात करेंगे।

0: देखो, आप सभी एग्री करेंगे इस बात से कि हमने जो एक्चुअल पढ़ाई की है कॉलेज स्कूल में और हम एक्चुअल जो काम करते हैं, कभी कभी इसमें ना काफी डिफरेंस होता है। स्पेशली अगर हम बात करें मीडिया इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि मीडिया के बारे में अगर हम क्लासरूम में सिर्फ बैठकर किताबें पढ़ाई करें तो दैट इज जस्ट नॉट इनफ। और इसी ब्रिज को गैप करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त खबर आई है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक।
1: क्या खबर कतर?
0: देखिए, कतर में खबर ऐसी है दैट कतर यूनिवर्सिटी एंड कतर मीडिया कॉरपोरेशन हैव जॉइंट हैंड्स सो दैट स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ रियल मीडिया एक्सपीरियंस भी मिल सके। स्टूडेंट्स को मीडिया कॉन्टेंट क्रिएट करना, एक्चुअल कवरेज के पार्ट बनना, ट्रेनिंग लेने और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अलॉन्ग विद दैट, बोथ साइड्स विल वर्क टुगेदर ऑन मीडिया प्रोग्राम्स, इवेंट्स एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज की जाएगी। वेल, द कोलैबोरेशन विल ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग स्टूडियोज एंड अदर मीडिया फैसिलिटीज फॉर लर्निंग एंड ट्रेनिंग। एंड ऑनेस्टली, अगर आपका चाइल्ड जो है मीडिया, जर्नलिज्म, टेलीविजन, रेडियो या कॉन्टेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड है, देन दिस काइंड of exposure definitely can make a huge difference। Because देखिए, classroom आपको basics जरूर सिखाता है, एक नींव होती है, एक foundation होती है, but एक जो confidence चाहिए होता है ना, वो सिर्फ आपको real on ground काम पे ही मिलता है ना। माइक से दिल तक आफ्टरीन है आपके साथ और मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
6: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback.
7: Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
5: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply.
8: कौन है?
9: स्टेन।
8: स्टेन कौन?
9: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
10: Only on 89.6 Mirchi 1.
11: It's hot.

वेल देखिए, कतर में अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब मार्केट को क्लोजली फॉलो करते हैं, या सिंपली ये जानना चाहते हैं कि कंट्री का बिजनेस लैंडस्केप किस डायरेक्शन में जा रहा है, देन देयर आर प्रीटी सिग्निफिकेंट नंबर्स. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, एंड लेट्स डाइव इनटू आज की खबर. खबर कुछ ऐसी है दैट कतर्स मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हिज एक्सलेंसी शेख फैसल बिन थानी अल थानी, इन्होंने बताया एट कतर इकोनॉमिक फोरम में दैट मोर देन 5,000 फॉरेन ओन्ड कंपनीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन कतर इन जस्ट प्रीवियस 3 months. यस, और ये नंबर और ज्यादा स्टैंड आउट इसलिए करता है क्योंकि अराउंड द सेम पीरियड लास्ट ईयर से मुकाबले ये 60% हायर है. वेल, मिनिस्टर ने यह भी बताया दैट कतरी मैन्युफैक्चरर्स, इनके जो एक्सपोर्ट्स है वो भी 12% बढ़ गए. So locally manufactured products are increasingly reaching markets outside Qatar as well, and where well there is one more big number jahan Qatar is currently in discussions around 4 major foreign direct investment projects which is worth nearly $15 billion. Focus is also widening into areas like technology and data infrastructure, manufacturing mein, food, healthcare and medical devices mein. So basically diversification pe bahut focus kiya ja raha hai. So 5,000 plus foreign owned companies in 3 months, exports up to 12% and nearly $15 billion ke projects under discussion. Well, numbers to definitely kafi bade hain, lekin ab dekhna interesting hoga ki ye growth Qatar mein kitni new businesses aur career opportunities create karti hai. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ और मिर्ची इट्स हॉट.

0: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
4: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
3: This initiative is driven by GWM.
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा.
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: देखो कुछ भी कहो, जब से हम कतर आए ना, भले ही हमने फुटबॉल कभी फॉलो नहीं किया था, लेकिन नाउ फुटबॉल में इंटरेस्ट डेफिनेटली आ गया है। और फुटबॉल देखने का मजा ना क्राउड के साथ ही आता है, मानते हो कि नहीं? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए, अगर आप इस बार गल्फ कप जो है फॉलो करने वाले हैं, तो मैं बता दूं, द 23rd ऑफ सितंबर से लेकर 6th ऑफ अक्टूबर तक 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम अरेबियन गल्फ कप जो है, इसके सिलेक्टेड मैचेस वहां पर फ्री लाइव स्क्रीनिंग्स कर रहे हैं। दिस इज हैपनिंग ऑन लेवल 7 आउटसाइड द ई स्पोर्ट लाउंज। एंड यूजफुल पार्ट ये है कि एंट्री कंप्लीटली फ्री है, कोई प्रायर रजिस्ट्रेशन भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर बस ये है कि सीटिंग जो है वहां लिमिटेड है, देन इट्स ऑब्वियसली ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर मिलेगी। वेल, टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला है 23rd ऑफ सितंबर को, और ये है इराक वर्सेस ओमान फर्स्ट मैच जो है, उसके बाद में सऊदी अरेबिया की मैच है वर्सेस कुवैत एट 9 PM। देन कतर सपोर्टर्स जो है, आपके डेट्स नोट कर लीजिए, बिकॉज कतर वर्सेज बहरीन इज सेप्टेम्बर 24th एट 9 PM। एंड देन उसके बाद में यमन वर्सेज कतर जो है सेप्टेम्बर 27th है एट 6:55 PM। एंड UAE वर्सेज कतर इज 30th ऑफ सेप्टेम्बर एट 8:30 PM। दोनों जो सेमीफाइनल्स है ऑन अक्टूबर 3rd होने वाले हैं, एंड द फाइनल इज गोना हैपन ऑन अक्टूबर 7th। और इसकी भी जो स्क्रीनिंग है ना वहां पर होने वाली है। वेल, इंटरेस्टिंगली द म्यूजियम इज नॉर्मली क्लोज ऑन ट्यूजडेज, लेकिन अगर मैच के दिन आने वाली है देन ये जो म्यूजियम है ये खुला रहेगा, यानी सेप्टेम्बर 29th एंड अक्टूबर 6th को। सो देखिए, यहाँ पर अब स्टेडियम में देखने का अपने पास अभी जो है ये फैसिलिटी फिलहाल नहीं है, क्योंकि मैचेस कतर में नहीं हो रही है, बट आप साथ में यहाँ पर एक साथ बैठकर जब देखेंगे तो वो स्टेडियम वाली वाइब कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगी। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: वैसे

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vid bala burka.
1: Milci, burka. हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में है क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
1: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
1: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा अभी
1: आप देख बदतमीज से बात मत करिए आप समझ गया मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा
2: हूँ
1: मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
2: आराम कर दिया तुम जीना
1: बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं
4: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है
5: अरे रिलैक्स लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है
4: हाफ पे बैक मतलब
5: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली
4: वाओ किस किस चीज पे
5: रेडीमेड गारमेंट्स साड़ीज चूड़ीदार फुटवेयर लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज
4: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी
5: बिल्कुल वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो तो देर किस बात की हेड टू लूलू हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा लूलू वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप
6: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
7: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
8: Cut, cut.
9: Who that?
8: Jassi.
9: Jassi? Kaun si wali Jassi?
8: Jassi who has come, auntie ji?
9: Cut, cut. Who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: वेल माय बंधुओं, चलो थोड़ा सा माल मसाला आपको सुनाती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और बात अगर बॉलीवुड की है तो डेफिनेटली थोड़ी सी ऐसे मसालेदार ही होती है ना।
1: मिर्ची स्पॉट बॉय, बॉलीवुड की अंदर की खबर। आफरीन मैडम, पता है क्या?
0: जी हाँ, हमें तो पता है, थोड़ा सा पर्दा उठाते हैं क्योंकि आपकी मैडम को ये बॉलीवुड के अंदर की बात पता है कि दृश्यम, पहले तो दृश्यम के बारे में बात करेंगे। मेरे पास तीन पहले खबरें हैं। दृश्यम द कंक्लूजन, अब इसकी थर्ड पार्ट आ गई है। अब जानते हो क्या, आपको पता है शूटिंग स्टार्ट होने में जब सिर्फ 7 दिन बाकी थे ना, तब अक्षय खन्ना फिल्म से एग्जिट कर चुके हैं। Really? And then came जयदीप अहलावत on board. अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक्ट्रेस सिर्फ रिप्लेस नहीं हुआ है, जयदीप के कैरेक्टर में उसको फिट करने के लिए काफ़ी सारे स्क्रीन प्ले के पोर्शंस लास्ट मिनट रीराइट करना पड़ा था। सो वेल, ये एक हो गई हमारी अंदर की खबर। उसके बाद दूसरी खबर ये है कि अजय देवगन डायरेक्टर रोहित जुगराज के साथ उनकी अपकमिंग हॉरर थ्रिलर का टाइटल रिपोर्टेडली सूर्यास्पर्श रख रहे हैं। ठीक है, फिल्म अभी डेवलपमेंट में है तो कास्ट और बाकी डिटेल्स का पर्दा हम यहां धीरे धीरे खोलेंगे जरूर। एंड बात करते हैं अब तीसरी खबर के बारे में, जहां अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर की पिक्चर आ रही है ईथा नाम की। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार इसका प्रपोज्ड बॉक्स ऑफिस क्लैश जो होने वाला था दिसंबर में, दिसंबर की सबसे बड़ी मूवी अपेरेंटली किंग के साथ में, अब ये जो है इट इज अ सोलो थिएट्रिकल रिलीज ऑन 4th of December। सुदृश्यम में लास्ट मिनट कास्टिंग की ट्विस्ट हो या अजय देवगन की एक हॉरर थ्रिलर की ब्रूइंग चल रही हो या दूसरी तरफ अक्षय और श्रद्धा कपूर का दिसंबर की मूवी की बात हो, सब कुछ आफरीन ने बता दिया आपको। बाकी आगे की बातें ऐसे ही लाते रहेगी ऑन माय शो मिर्ची मॉर्निंग्स। माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अच्छा बताओ, किसी को पसंद करने की वजह क्या होती है? कभी किसी की स्माइल अच्छी लग गई, कभी बातें, कभी पर्सनालिटी, और कभी बस वो इंसान ना अच्छा लग गया। बस रीजन ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और शायद ना वही डिफरेंस है किसी को पसंद करने और किसी से मोहब्बत करने में। और इसी ख्याल पर आज की मेरी यानी आफरीन की शायरी है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है कि इश्क उससे करो जिसमें खामियां बहुत हो, इश्क उससे करो जिसमें खामियां बहुत हो, ये हुस्न से भरे चेहरे इतराते बहुत है। और मोहब्बत रूह से होनी चाहिए, मोहब्बत रूह से होनी चाहिए, ये लफ्जों से जताने वाले रुलाते बहुत है। क्या बात है। वेल, बातें बनाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सच में उसे जताने वाले, उसे निभाने वाले बहुत कम। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Well, my friends, after this beautiful track, here we are back again. बैक अगेन विथ बातें जो आपके काम की हो. वेल चलिए देखते हैं गोल्ड अपडेट्स क्या कहती हैं आज की.
1: गोल्ड अपडेट.
0: वेल देखिए गोल्ड आज कहता है दैट पैम्प 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 576 का ट्रिविया. आई थिंक सो इट्स गॉन डाउन. 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2699. 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5329 का ट्रिविया. वेर एज 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16470 का ट्रिविया. एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 61151 का ट्रिविया. ये थे आज के गोल्ड रेट. सोना लेना हो या ना, लेकिन भाव पे नजर ना हमेशा रहनी चाहिए. और देखिए ये जो कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप, कंसिस्टेंटली ये गिरते जा रहा है. शायद आपके काम का हो. Why not? माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: Stay ahead of today's gold rates with Alfardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
6: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
7: Only on Mirchi. It's hot.
8: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है. Is it Delhi? Is it Mumbai?
9: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है. वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है. वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है. सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं. राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है.
8: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
6: बॉलीवुड बोल्डाल. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल.
7: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
10: कट कट.
11: हू दैट?
10: भट्ट.
11: भट्ट? अरे भट्ट हूँ.
10: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है.
11: खट खट. हू दैट?
12: Only on 89.6 Mirchi 1.
13: Mirchi, it's hot.

0: वेल, सिंस द वीकेंड इज स्टिल गोइंग ऑन, चलिए एंटरटेनमेंट के दूसरे ऑप्शन ही बता देती हूँ आपको. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग. और जाने से पहले ये तो बता दे भाई, ओटीटी मार्केट का हाल.
1: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
2: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है.
3: अरे मार्केट में नया क्या है?
0: वेल, देखिए, अगर आपको सस्पेंस पसंद है, थ्रिलर स्टोरीज पसंद है, तेन परिणीति चोपड़ा शक ट्रस्ट नो वन इज स्ट्रीमिंग फ्रॉम स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स. और ये कहानी है एक माँ की जिसका बच्चा किडनैप हो जाता है व्हेन इट्स अ न्यूबॉर्न बेबी, और फिर 9 साल बाद भी शी इज सर्चिंग फॉर आंसर्स और हर किसी को शक की नज़रों से देखती है. सो वेल, ये पहेली कैसे सुलझेगी वो तो आप देखने पर ही समझ जाओगे. वेल, थोड़ा सा लाइटर चाहिए, मेरे चॉइस टाइप चाहिए, तो डेफिनेटली रिकमेंडेड बाय आफरीन बकैती सीजन 2. बकैती के बारे में अगर बात करें तो कटरिया फैमिली है, ये ओल्ड गाजियाबाद में रहती है और ये टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, हमारी पुरानी फैमिलीज की तरह ही, जहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, फैमिली के अंदर क्लैशेस भी होती है, वो रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं, वो हर घर में बकैती जो चलती है वो सारी इसमें आपको समझ आएगी. लेकिन आई एम श्योर इसमें आप जब देखोगे ना, आपके अपने घर के 2-4 कैरेक्टर्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कमिटमेंट इशूज है, मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इश्यूज, अब भी नहीं समझे, मतलब बड़े बड़े जो सीरीज होते हैं 10 एपिसोड्स के, 8 एपिसोड्स के, ये सब नहीं जमता है हमको आफरीन, ऐसा कुछ बताओ कि 1 घंटे में ख़त्म हो जाए और हम एंटरटेन भी हो जाए. तो फिर जाकिर खान का पापा, यार व्हाट अ सीरीज नहीं है, एज आई सेड इट्स अ नाइस स्टैंड अप कॉमेडी है, इट्स अ रिलेशनशिप अबाउट फादर सन इसकी कहानी है, आपके चाइल्डहुड मेमोरीज को भी और ज़्यादा जिंदा कर देगी. एंड आई थिंक सो समथिंग वी ऑल शुड वॉच इट. यार ये जो हमारा इमोशनल पोशेंट है ना, ये कहीं ना कहीं मरता जा रहा है विथ ऑल दिस धूम धड़ाका अडिशम नशम. मतलब यार थोड़ा सा ठहर जाओ, थम जाओ, और इस तरह से जो हमें एक्चुअली कनेक्ट करे अपने आप से, ऐसे कुछ भी देखो ना, है ना. माइक से दिल तक आफरीन लेना चाहेगी अलविदा आपसे, मिलूंगी कल सेम टाइम सेम शो. अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहेगा मिर्ची. इजाजत है, टाटा बाय बाय.

0: हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

सलाम नमस्ते कतर वालों, क्या हाल चाल। हाँ जी, हाल चाल तो आपके सबके अच्छे ही होंगे, लेकिन एक दिन मैं ऐसे ही बैठ के सोच रही थी और मैं सोच रही थी कि हमारे पास ना बैक ऑफ द माइंड कितने काम है करने के लिए। हमको ये भी करना है, वो भी करना है। फॉर एग्जांपल, हमें अपनी कोई हॉबी थी जो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जिंदगी में करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा रीज़न आपको बताऊँ क्या है? यस, जो आपके हाथों में फ़ोन रहता है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता लेकिन ये सच्चाई है। आई एम नॉट बीइंग अ मदर टू एवरीवन, लेकिन ये एक सच्चाई है जिंदगी की जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। दैट इज हमारा फोन, जिसने हमारा सारा टाइम ले लिया है और पूरी अटेंशन हम अपने फोन को ही देते हैं। हम किसी इंसान से इतना नहीं जुड़े हैं जितना हम अपने फोन से जुड़े हैं। हमारे लिए हमारा फोन उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि सांस लेना। बस उसी बात पे मैं एक एग्जांपल कहना चाहती हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में जो मैंने फेस किया है वो ये है कि फ़ोन ने मेरी ज़िंदगी का टाइम इतना ले लिया है कि मुझे मेरे लिए टाइम कम लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी हॉबीज़, जैसे मुझे आर्ट का शौक़ था, डांस का शौक़ था, गाने का शौक़ था, ये सब शौक़ ना मैं अपने ना करके मैं अपने फ़ोन पे लोगों को करते हुए देखती हूँ एंड आई फील सैटिस्फाइड कि हाँ चलो कोई कर रहा है फॉर मी। बस यही हैबिट जो है फ़ोन ने मेरे अंदर डाल दी है। आई होप आप अगर इस बात पे एग्री करते ना तो मुझे ना ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा। इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है मिर्ची ईशा के नाम से, एंड ऑल्सो आप मिर्ची वन कतर पे भी बता सकते हैं। 5110896 पे भी आप बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। भाई मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि सारा टाइम मेरा मेरी हॉबीज को खत्म करते हुए लोगों की देखते हुए मेरा निकल जाता है। और इसी के साथ आज हम शो शुरू कर रहे हैं हमारा मिर्ची वीकेंड वाइज, जहां पे हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इवेंट्स की। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ,
3: मैं
2: तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को ये आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए।
2: हेलो
3: हाँ विनीत जी, मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहा है, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मैं, मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे।
2: हेलो हेलो,
3: मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये है?
3: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन करो, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मन मानिए।
2: अच्छा भैया
5: आप मेरे वाले थे बजाने वाले थे। यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
6: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है?
5: हाफ पे बैक मतलब?
6: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
5: वाओ, किस किस चीज पे?
6: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
5: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
6: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
7: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
8: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
9: कैसे रुक सकता है?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन,
12: इट्स हॉट मिर्ची।

इमेजिन कीजिए कि सुबह के 6 बजे जब दोहा प्रॉपरली उठा भी नहीं होता है और आप निकल चुके हैं एक अनफॉरगेटेबल ओशन एडवेंचर पर। डेस्टिनेशन है अल रुवेसी। दोहा से अराउंड 1 घंटे का ड्राइव है और यहाँ से शुरू होती है आपकी व्हेल शार्क स्पॉटिंग विद कूल कतर। जी हाँ, बोट जैसे ही ओपन सी में पहुंचती है तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है क्योंकि सामने आ सकती है ओशन की सबसे जेंटल एंड जायंट वाली शार्क, व्हेल शार्क्स। यस, यू हर्ड दैट राइट यार, व्हेल शार्क्स को आपको स्पॉट करना है तो जाना तो बनता है। और सबसे अमेजिंग पार्ट जो आपको इसके इनके साथ मिलेगा, दैट इज कि आप इनके साथ स्विम भी कर सकते हैं एंड एक सेफ और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं एंड मतलब परफेक्ट एक जो पैकेज है ना वो ले सकते हैं। तो भाई देर किस बात की है, 6 घंटे का ये एडवेंचर ट्रिप है, जून से सितंबर के सीजन में ही अवेलेबल होता है हर साल, जहाँ पे आपको स्नैक्स भी मिलेंगे, रिफ्रेशमेंट्स भी होंगी और सेफ्टी इक्विपमेंट भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपके अंदर का भी थोड़ा सा एडवेंचर और समुद्र के साथ एक मैजिकल मेमोरी बनाने का क्रेज जाग रहा है ना, तो बस उसको जगा के रखिए क्योंकि कूल कतर के साथ बुक कीजिए आज ही अपना व्हेल शार्क एडवेंचर और इस वीकेंड एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वैन इट्स हॉट।

कतर को जैसा हम आज की डेट पे देखते हैं वैसा ही कई साल पहले नहीं था। बहुत बड़ा चेंज कतर में देखा गया है। और अगर आप इस चेंज को देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कतर ने कहां से शुरू किया और किस तरीके का लाइफस्टाइल था उसका पहले, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए एक ऐसी जगह जहां पे आप बहुत साल पीछे चले जाएंगे और यहां पे आपको देखने को मिलेगा कतर की हिस्ट्री, लाइफ, किस तरीके से ट्रेडिशनल होम्स होते थे, विलेज स्ट्रीट्स होती थी, हेरिटेज सब डिस्प्ले है, किस तरीके से लोग पहले ज़माने में रहते थे, किस तरीके से वो व्हीकल्स जो हैं उनमें ट्रैवल करते थे। एंड उसके अलावा आपको ये ब्यूटिफुल सी कंट्री की प्राइवेट कलेक्शन आपको मिलेगी सिर्फ एक जगह, दैट इज़ शेख फैजल बिन कासिम अल थानी म्यूज़ियम में। एक और बात बता दूं कि हर कॉर्नर जो है ना वहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्टोरी बताएगा जो आपको तो फैसिनेट करेगा ही, लेकिन आपके बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब जैसे कि वो कतर हिस्ट्री भी एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो जब वो कतर की हिस्ट्री को देखेंगे दे विल फील फैसिनेटेड एंड दे विल फील कि यार मुझे और जानना है कतर के बारे में, वाकई में ऐसा फील होगा। और अगर आप इस म्यूज़ियम में पहले जा चुके हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर ज़रूर बताइएगा कि आप गए थे बच्चों के साथ और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था। आप मिर्ची वन कतर पर भी बता सकते हैं और मिर्ची ईशा पर भी ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा था। और उसके बाद या उससे पहले कभी भी आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक अल समरिया इस्टेट है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं पीसफुल सराउंडिंग्स। यहाँ पे आपको अरेबियन ऑरिक्स भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको पीकॉक्स भी मिलेंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा शेख फैजल बिन कासिम अल थानी म्यूज़ियम के पास। एंड अगर आप नहीं गए हैं तो जाइएगा ज़रूर। इस वीकेंड बच्चों को लेके जाइए और इन्जॉय करिए इस वीकेंड को। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

आइसक्रीम चॉकलेट मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती हैं सारी पहेलियाँ। जी हाँ, पहेली तो लगेगी ना, क्योंकि अब आफ्टर 30s या 35 के अबव आपका गाना बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप बोलते हो डॉक्टर दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, यही रह गया है मेरी जिंदगी में। अब ये गाना इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स आइसक्रीम से कोई कैसे पीछा छुड़ा सकता है ना। और आइसक्रीम का नाम सुनते ही दूर कैसे रहा जाए भाई, आइसक्रीम का नाम से मुंह में पानी आने लग जाता है, ठंड सी लगने लग जाती है, सनसनी सी होने लग जाती है। तो बस अगर आपको भी ऐसा ही एक इवेंट चाहिए ना, ठंडा ठंडा सा एकदम कूल करने वाला, तो आपके लिए एक इवेंट लाई। हाँ जी, नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल आइसक्रीम शो होने जा रहा है ओएसएस स्टेज मॉल ऑफ कतर में, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं इस ब्रांड न्यू शो को। और ये एकदम नया होने वाला है, पहले आपने शायद कभी नहीं देखा होगा ऐसा शो जहाँ पे आपको आइसक्रीम शो देखने को मिल रहा है। भाई गॉड यार, क्या होने वाला है ये तो मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन जाके देखना जरूर है कि होगा क्या। एंड उसके अलावा आपको ये 3 अक्टूबर तक, माइंड यू 3 अक्टूबर तक ही है ये, जाना चाहते हैं इस वीकेंड जाइए, 4:30 PM से 8 PM तक ये रहेगा। और आप इंजॉय कर सकते हैं इस वीकेंड एक ठंडा ठंडा माहौल के साथ, कूल कूल माहौल के साथ इंजॉय कर सकते हैं आइसक्रीम शो को। और बस ऐसी मजेदार बातों के साथ सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा। आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है, बट रियली टेल अस हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू मेड द सॉन्ग?
3: व्हाट आई वाज 25 और समथिंग। इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वाटरफॉल से पानी गिर रहा था, सारे बादल नीचे आ चुके हैं, उस बीच में देन आई सॉ द लिटिल ट्रेन कमिंग आउट। देखो बारिश हो रही है, देखो ना देखो, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग।
2: अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और बाबा ब्लैकशिप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स आउट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

वाइन तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज, तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्स जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

0: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: अरे बोलना मामू मिर्ची हेल्पलाइन व्हाट इज द क्वेश्चन.
1: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
2: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व.
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

देखिए बचपन से ना आज तक मैंने एक कहावत जरूर सुनी है अपने बड़ों से, दैट इज कि जैसा देश वैसा भेष। एंड इट सिंपली मीन्स कि जिस देश में आप रहते हो उस देश का ट्रेडिशन कल्चर को इतना करीब से देखिए और इतने करीब से उसको यू नो फॉलो करिए ताकि आपको लगे कि आप इस कंट्री के ही फैमिली मेंबर हो। तो बस अगर आपको भी मेरी तरह इन ट्रेडिशंस को और क्रिएटिव साइड्स को देखना पसंद करते हैं या आप उसमें यू नो अपने आप को इंडल्ज करना डिग करना पसंद करते हैं ऐसे कल्चर में, तो आपके लिए एक इवेंट लाई हूँ। जी हाँ, बता दूँ कि होने जा रहा है मीना डब्ल्यू फीना, जो हो रहा है आउटडोर कोर्टयार्ड अल हजम में, एंड ये 24 सितंबर से शुरू हो चुका है एंड 24 अक्टूबर तक रहेगा। तो नो हरी, आप आराम से जाइए जब मर्जी। एंड इसके टाइमिंग्स हैं 3 PM to 11 PM एंड ऑफ कोर्स इसमें कोई भी टिकट की ज़रूरत नहीं है आपको, टोटली फ्री है एंट्री। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं वो एटमोसफेयर ऑफ यू नो कतारी बिजनेसेस, जो छोटे छोटे बिजनेसेस या आपका कह लो कि हैंडक्राफ्टेड चीज़ें हैं या पेंटिंग्स हैं जो कतर की प्रॉपर जो यू नो ट्रेडिशन शो करता है, हेरिटेज शो करता है। इवन बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आपको नहीं पता होंगी कतर की, वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अगर आप जाना चाहते हैं, क्रिएटिव साइड देखना चाहते हैं कतर की, जाइए इस वीकेंड और इन्जॉय करिए बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम, बिकॉज आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, फैमिली के साथ शाम को जाके इन्जॉय कर सकते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह पसंद करते हैं ऐसी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना तो ज़रूर जाइएगा। And stay tuned with me only on 89.6 Mirchi 1, it's hot.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La fiesta la murga. Mirchi, murga.
2: Hello?
3: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198393।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुन रहा था, मतलब लगा।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
7: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स संडे सिर्फ QR5 से, स्वर्ल्स QR9 में, ब्लिजर्ड्स QR10 से और केक सिर्फ QR60 से।
6: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
8: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
9: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
8: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
10: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
8: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
11: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
12: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

सच्ची मुझे ऐसा लगा कि आज मैं फतेह पाकर ही रहूंगी, and I was damn sure. और हुआ भी वही, मुझे उसी समय लाइसेंस मिल गया. बट वही बात होती है कि अगर आप अपना प्रस्पेक्टिव पॉजिटिव रखते हो तो हर चीज पॉजिटिव होती है. एंड इसी के साथ एक और गाना जो है मुझे बहुत इंस्पायर करता है, दैट इज फ्रॉम द मूवी लक्ष्य. लक्ष्य का जो टाइटल ट्रैक है संग बाय कर एहसान लॉय, एंड लक्ष्य मूवी से ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की मूवी थी ये, बहुत खूबसूरत मूवी. और इस ट्रैक में भी जो बातें बोली गई ना बड़ी इंस्पायरिंग है कि भाई यही लक्ष्य है तेरा, यू हैव टू गो ऑन. तो इतना इंस्पायर्ड लगता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि ये गाना सिर्फ मेरे लिए ही बना है टू इंस्पायर मी व्हेन आई एम वेरी लो इन माय लाइफ. ऐसे ही आपके भी बहुत इंस्पायरिंग सॉन्ग्स होंगे. कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत इंस्पायर करता है मुझे जरूर बताइएगा, मेरे मिर्ची वन कटर अकाउंट पे बताइएगा, या फिर आप मुझे मिर्ची ईशा पे भी बता सकते हैं. एंड ऑल्सो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 5000 1896 पे मैसेज करके बताइए कि आपका ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपको आपके लो टाइम पे आपको अपलिफ्ट करता है. एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन. इट्स हॉट.

कुछ ही दिन पहले मेरी बेटी ना एक छोटा सा सीड लेके आई थी और बोली कि मुझे ना ये सीड घर पे लगाना है अपने हाथों से। और उसने उसको लगाया भी, उसने उसको लगाया और उसको रोज पानी देती रही। दिन बीते, वीक्स बीते, बहुत सा टाइम हो गया, लेकिन शी वॉज गेटिंग लिटिल यू नो सैड कि इसमें कुछ आ नहीं रहा है, कोई निशानी नहीं दिख रही है कि ये बढ़ भी रहा है या नहीं। एंड आफ्टर फ्यू मोर डेज उसके पेशेंट्स को यू नो टेस्ट करते हुए इस प्लांट ने थोड़ी सी झलक दिखाई, थोड़ा सा जो सीड है उसने हल्का सा अपना ग्रोथ दिखाई, वो हल्का सा ग्रीन रंग का जो प्लांट है ना वो ऊपर ऐसे आ गया। और उस छोटे से लीफ ने मेरी बेटी के फेस पे बहुत ही खुशी और एक जो एनर्जी थी ना उसकी, वो इतनी पॉजिटिव हो गई, इतनी खुश हो गई वो। तो इससे ना मेरी बेटी ने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि ग्रोथ अक्सर ना बहुत साइलेंटली होती है, बहुत क्वाइटली होती है। ग्रोथ ऐसे नहीं होती कि फटाक से हो गई और शोर के साथ आई, नहीं, ग्रोथ आती है बहुत साइलेंटली और हम शायद उसको परख भी नहीं पाते हैं। शायद हम अभी भी ग्रो हो रहे हैं और हमको पता भी नहीं है। तो बस मेरी बेटी को तो बहुत अच्छा लेसन मिला कि भाई लाइफ में कीप ऑन गोइंग, कीप बिलीविंग एंड बी पेशेंट विद योरसेल्फ, क्योंकि क्या पता कल किसी मोड़ पे आपका ये जो सब्र है यही काम आए। बस इसी के साथ वो बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि पेशेंटली कोई भी काम करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी करना पेशेंटली ही है अगर आप उस गोल तक पहुंचना चाहते हो। सो बस मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

बातें तो बहुत थी पर वक्त थोड़ा कम था। आपका साथ मिला तो हर पल कुछ खास था। और जब इस प्रकार की बातें शुरू हो जाएं तो समझ लीजिएगा कि जाने का समय आ चुका है। जी हाँ, और बस अब जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे याद ज़रूर करते रहिए। और उसके साथ अगर मैं चली गई अभी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे हाय हेलो भी भेज सकते हैं मिर्ची ईशा के नाम से, या मिर्ची वन कतर पे भी आप हाय हेलो बोल के मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का रिप्लाई आता है और आप लोग बताते हैं कि हाँ हम आपको सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करिएगा। और अब लेती हूँ आपसे अलविदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर और मिलती हूँ आपको अगले वीकेंड। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
2: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे। आई ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी। तो बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
1: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।

गई भाली वाह हाय शर्मीली वाह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट ईस्ट और वेस्ट इंडिया

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा, सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भरतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me.
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us.
0: ताजमहल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट,
1: इंट्रोवर्ट हूँ दोस्त, ज्यादा लोगों से बात करना, ज्यादा बाहर जाकर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अलग अलग जगह जाकर सोशल मीडिया से पोस्ट करके बता रहे हैं लोग। तो ये जरा समझ सी नहीं आई बात, आपको आई तो बताओ यार। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है और मैं यही सोच रहा था कि लोग ना इंट्रोवर्ट को एज अ कूल वर्ड मानने लग गए हैं। मतलब एक्सट्रोवर्ट से आपको सीखें, जो दिल से एक्सट्रोवर्ट हैं वो भीड़ में खो जाएंगे लेकिन हमेशा ये बोलेंगे कि मैं हूं एक्सट्रोवर्ट, मुझे पसंद है लोगों से बात करना घूमना। लेकिन इंट्रोवर्ट्स में ना कुछ फेक इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं जो सिर्फ दिखाते हैं लेकिन अंदर से उनके भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो भी टाइम टू टाइम घूमने जाते हैं, बट समझ तब नहीं आता जब मैक्सिमम बार वो खुद को इंट्रोवर्ट सोशल मीडिया पे बोलते हैं इतने सारे लोगों के आसपास खड़े होकर। एंड दिस आई हैव ऑब्जर्व्ड इन सो मेनी स्टोरीज, हैव यू ऑब्जर्व्ड इट? क्या मेरा ये थॉट सही है या इसमें कुछ ऑल्टरेशन करना है? तो आओ बात करते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर मिर्ची क्रिश के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। फिलहाल कुछ बढ़िया गानों के साथ शुरुआत करते हैं, दिस इज मिर्ची। ऐसा देखो देखो

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid bala burga. Mirci, burga.
1: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
2: Hello,
3: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
2: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरवील सिंह बोल रहा हूँ.
2: हाँ जी.
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
2: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे. 3 लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
2: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करेगा.
3: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
2: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
3: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में, आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये
2: तो
3: जाना सनम.
2: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई
3: है मेरे पास. दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप.
2: ठीक है, मैं क्या करूँ बताइए ना.
3: आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
2: है. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
3: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ पे श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
2: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
3: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
2: हाँ बताइए
3: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
2: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
3: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
2: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब कुकड़ू को.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
0: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1. इट्स हॉट.

फाइनली इनको इनका पहला नेशनल अवार्ड मिला एंड आई जस्ट थिंक ही लेट कर दिया। सबका ही कहना था कि इनको ना पहले मिल जाना चाहिए था अवार्ड। एवरीवन वाज सो हैप्पी अबाउट हर। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यामी गौतम को मिला ये नेशनल अवार्ड। So she got the national award for the first time ever for the movie Article 370. In fact, best feature film का award भी Article 370 को ही मिला and audience में बैठे थे आदित्य धर जो कि आंखों में आंसू लिए बैठे थे। ये video viral हुई and in fact seriously I do believe कि यामी गौतम ने past में इतना अच्छा काम किया उनको काफी पहले मिल जाना चाहिए था but देर आए दुरुस्त आए तो सही। ये video जो viral हुई ना जो आदित्य धर को रोते हुए दिखा रही है वो ये कह रहे हैं लोग कि कुछ लोग तो बड़ा अच्छे से कमेंट कर रहे हैं ओह सच अ क्यूट मोमेंट फॉर द कपल, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं ये इसलिए नहीं है, ये अंदर ही अंदर दुखी हैं कि धुरंधर को ऑस्कर के लिए नहीं भेजा गया। पता नहीं जो भी है लेकिन आंसू जेन्युइन है, चाहे वो मूवी ना जाने के हो या फिर यहां बैक टू बैक दो नेशनल अवार्ड्स के हो। बाकी आप बताना आपको क्या लगता है। मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पर हूं, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। दिस इज मिर्ची।

इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू ट्रेलर ड्रॉप्ड यस्टरडे. मूवी का नाम है प्रेम कीटाणु. मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है एंड ये मूवी एक एवरेज रोम कॉम की तरह ही लग रही है. ट्रेलर देख के तो ऐसा ही लग रहा है. स्टारिंग अपार शक्ति खुराना, वीर पहाड़िया, आफिसा सईद एंड राकेश बेदी साहब. ट्रेलर जैसा कि मैंने कहा एवरेज रोम कॉम इसीलिए लग रहा है बिकॉज लड़के और लड़की की प्रेम कहानी है. सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है अंटिल लड़की का दोस्त एंट्री लेता है एंड देन इट्स अ गेम ऑफ जेलेसी, कॉम्पिटिशन एंड सो ऑन. सो स्टोरी में ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो अलग लगे. इनफैक्ट वीर पहाड़िया के एक्सप्रेशन में इतना वेरिएशन नहीं है तो आप स्टोरी में तो ना ही एक्सपेक्ट करके चलना. लेकिन मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग ये नहीं है. मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग ये है कि ये मूवी 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, यानी इट विल बी क्लैशिंग विद दृश्यम 3 विच इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज ऑफ दिस ईयर. भाई तो सब तो सत्संग सुनने और पाव भाजी खाने जाएंगे तो प्रेम के कीटाणु देखने कौन जाएगा? वेल विल सी दैट. फिलहाल गानों का क्या सिस्टम है ये देखते हैं. ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
6: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
5: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
7: कटकटे,
8: अबे कौन है?
7: उत्तपा।
8: उत्तपा कौन?
7: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
8: खट खट, हू दैट?
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: I like that song.

0: आई फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
4: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

जहां बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड यामी गौतम को मिला, वहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड शेयर हुआ। हम बात कर रहे हैं नेशनल अवार्ड्स की। कुछ देर पहले आई वाज टेलिंग यू अबाउट यामी गौतम को मिला पहला नेशनल अवार्ड फॉर द मूवी आर्टिकल 370। यहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक्चुअली दो एक्टर्स ने शेयर करा। इट वाज शेयर्ड बाय कार्तिक आर्यन फॉर चंदू चैंपियन एंड ममूती जी फॉर ब्रह्मयुगम। वहीं बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 370 को मिला था, वहीं बेस्ट फीचर फिल्म फॉर प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट अवार्ड, ये अलग कैटेगरी है, ये मिला कल्कि 2898 AD को। Now, प्रॉब्लम ये है कि ये एंटरटेनमेंट इतना ज्यादा होलसम दे चुकी है, इसका अगला पार्ट कंप्लीट तो छोड़ो आधा भी शूट नहीं हुआ है। इस कुछ टाइम पहले इनके डायरेक्टर ने बताया था कि प्रभास आए थे, उन्होंने कुछ दिन का शूट किया, ऑलमोस्ट 10 दिन के आसपास का ही शूट किया, उसके बाद वो दूसरी मूवी में बिजी हो गए हैं, तो जब वो फ्री होंगे तब शूट दोबारा से कंटिन्यू होगा, तब पूरा होगा पोस्ट प्रोडक्शन फिर। मतलब अगर यू आर वेटिंग फॉर द होलसम एंटरटेनमेंट का पार्ट टू, देन यू हैव टू वेट अ लिटिल लॉन्गर। मुझे लग रहा है ना मूवी को कुछ तो कर्स वगैरह लग गया है, एक छोटा सा हवन करा लो। पहले दीपिका जी छोड़ गई मूवी, अब प्रभास के पास टाइम नहीं है, करा लो एक हवन, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। हमें तो देखना था इसका सेकंड पार्ट, हम इसीलिए बोल रहे हैं। फिलहाल कुछ गाने सुनते हैं ओनली ऑन मिर्ची, इट्स ऑल।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं, फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

करता है। आई थिंक बॉलीवुड के लिए ना माइथोलॉजी रिलेटेड मूवीज का टाइम चल रहा है। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। विद हनुमान अंश क्रॉसिंग 350 करोड़ नाउ एंड रामायण पार्ट 1 रिलीजिंग ऑन दिवाली, बॉलीवुड मूवीज ने माइथोलॉजी को या तो बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है या फिर आज के टाइम के साथ अच्छे से ब्लेंड किया है। सो आज के पांच का पंच में मैं ऐसी ही पांच मूवीज आपके लिए लेकर आया हूँ। दिस इज माई लिस्ट, स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर 5, OMG यानी ओ माई गॉड। 2012 में आई ये मूवी स्टारिंग परेश रावल एंड अक्षय कुमार, डायरेक्टेड बाय उमेश शुक्ला। एक भूकंप से एक नास्तिक की एंटीक शॉप पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, उसको एक्ट ऑफ गॉड बोल दिया गया और इंश्योरेंस क्लेम देने से मना कर दिया गया। नाउ ही डिसाइडेड टू स्यू गॉड। और फिर इस केस में हमें एंटरटेनिंग वे में क्या क्या सिखाया जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर आती है नंबर 4 पे वो मूवी जिसके बाद आप मुझे जितना चाहे जज कर सकते हैं, पर मेरी बात सुन लेना पहले। दिस इज ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। 2022 में आई ये मूवी स्टारिंग रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन इन द लीड रोल्स, डायरेक्टेड बाय आयान मुखर्जी। इस मूवी ट्रिलोजी के इस फर्स्ट पार्ट में यूनिवर्स की कुछ नेगेटिव पावर्स डिस्ट्रॉय करने को तुली हुई हैं और उन्हें रोकने के लिए चाहिए कुछ अस्त्र, स्पेशली ब्रह्मास्त्र। ये मूवी अपना खुद का एक अस्त्रवर्स बनाने वाली है एंड जस्ट रिसेंटली अनाउंस्ड कि इसके सेकंड पार्ट पे ऑलरेडी काम शुरू भी हो चुका है। नाउ ऑनेस्टली अगर आप इस मूवी के डायलॉग्स को पूरे तरीके से चेंज कर दो ना, तो ये मूवी एक्चुअली काफी अच्छी विजुअल ट्रीट हो सकती है। बाकी अब आप मेरे को जितना चाहे जज कर लो। आगे की लिस्ट अगर गेस कर सकते हो या एड ऑन करना चाहते हो, देन इंस्टाग्राम पर आओ, मिर्ची क्रिश के नाम से आपको मिलूंगा, KRISH। फिलहाल मिलते हैं गानों के उस पार, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. Na viva la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
1: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
2: तेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है हेलो यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा अभी
1: मैं देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हाँ मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल पता
1: नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
2: आराम कर दिया तुम
1: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी, मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
5: Arre ba, ice cream and cake lovers, ready ho jao. Dairy Queen laya hai, dhamakedar special promotion.
6: Hanji, 26th se 30th September tak enjoy karo amazing deals. Sunday sirf QR 5 se, Swirls QR 9 mein, Blizzards QR 10 se aur cake sirf QR 60 se.
5: To der kis baat ki, apne favorite Dairy Queen outlet par jao aur sweet moments banao. Dairy Queen, happy tastes good. To der kis baat ki, sab kuch aadhe price mein.
7: Our business is our business, none of your business.
8: पर दीदी आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन इट्स हॉट

लिस्ट को आगे बढ़ाया जाए। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे मूवीज के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड में या तो माइथोलॉजी को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया या फिर आज के मॉडर्न टाइम्स में ब्लेंड करके दिखाया। पांच का पंच में इस लिस्ट में हमने फिफ्थ नंबर पर बात करी OMG मूवी के बारे में, फोर्थ पर बात करी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के बारे में। अब थर्ड नंबर पर आती है कल्कि 2898 AD। 2024 में आई ये मूवी स्टारिंग प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन, पोस्ट एपोकलिप्टिक या कलयुग के टाइम को दिखाती है जहां विष्णु जी के 10th और फाइनल अवतार कल्कि को अभी प्रोटेक्ट करना है बिकॉज ही इज अबाउट टू बी बॉर्न। अमिताभ बच्चन प्लेज द रोल ऑफ लेजेंडरी अश्वत्थामा और स्टोरी महाभारत के भी कुछ ग्लिम्सेस को दिखाती है। विद सेकेंड पार्ट इन शूटिंग ये एक 2-part कंप्लीट स्टोरी होने वाली है एंड देखने में मजा भी आएगा। फिर आती है सेकेंड नंबर पर वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स रिसेंटली रिलीज हुई महाअवतार नरसिम्हा। 2025 में आई ये एनिमेटेड मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय अश्विन कुमार जो कि विष्णु जी के सभी अवतार पर एक एक करके मूवी बनाने वाले हैं। दिस मूवी वॉज ऑब्वियसली ऑन द नरसिम्हा अवतार एंड अनएक्सपेक्टेडली इट ब्लू लाइक एनीथिंग ऑन रिलीज। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 15 से 40 करोड़ में बनी मूवी 300 से 325 करोड़ तक का प्रॉफिट लाने वाली है। एंड दिस इज अ सिंपल येट मैजिकल मूवी जो आपको पूरी स्टोरी बहुत ही सरल तरीके से बताती है। आगे की लिस्ट यानी कि नंबर 1 का स्पॉट अगर आप बताना चाहते हो या गेस करना चाहते हो देन मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाओ। मिर्ची क्रिश के नाम से अवेलेबल हूं। KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। दिस इज मिर्ची। इट्स ऑल।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

देखो धुरंधर को इतना सक्सेसफुल बनाया उसके अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स ने। आई थिंक आदित्य धर ये इसीलिए कर पाए बिकॉज वो शायद रियल लाइफ में भी यही करते हैं। आई हैव रीजन टू बिलीव दिस। देखो जितना गुस्सा आदित्य धर को आया होगा ना उससे ज्यादा गुस्सा शायद धुरंधर के फैंस को आया जब ऑस्कर के लिए उसे सेलेक्ट नहीं किया गया। इनफैक्ट ये तक कहा गया कि धुरंधर मूवी इज नॉट एन ऑस्कर मटेरियल। तो फाइनली इसके बारे में आदित्य धर से पूछा गया कि आपको क्या लगा, कैसा लगा, क्या बोलना चाहते हो। ऑल ही सेड वॉज कि आई होप टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर फॉर धुरंधर। एंड मुझे ऑनेस्टली ये स्टेटमेंट धुरंधर के फर्स्ट पार्ट के क्लिफहैंगर की तरह लगी जहां पे हमें अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार है कि अब क्या होगा। तो आई थिंक ये जो अगले साल अगला पार्ट आने वाला है ना आदित्य धर की रियल लाइफ का, तो इसमें भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। क्या पता अगले साल जा रही हो ऑस्कर्स में, कैसे क्यों ये कुछ नहीं पता। बट आई थिंक ये इंसान रियल लाइफ में भी यही करता है भाई। जिसने अच्छी मूवी बनाई है ना दैट पर्सन डिजर्व्स अवार्ड्स। तो ये मूवी फुल ऑन एंटरटेनिंग मूवी थी। आई थिंक इसको बहुत बढ़िया से बढ़िया अवार्ड मिलने भी चाहिए। Let's see what happens next. आपको क्या लगता है? Instagram पे हूँ मिर्ची क्रिश के नाम से। K-R-I-S-H is the spelling of my name. बताना अपना opinion. This is मिर्ची. It's all.

0: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
1: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
2: बहुत कुछ होगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Well, my friends, after this beautiful track, here we are back again. बैक अगेन विद बातें जो आपके काम की हो. वेल चलिए देखते हैं गोल्ड अपडेट्स क्या कहती हैं आज की.
1: गोल्ड अपडेट.
0: वेल देखिए गोल्ड आज कहता है दैट पैम्प 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 576 का थ्री रियल. आई थिंक सो इट्स गॉन डाउन. 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2699. 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5329 का थ्री रियल. वेर एज 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16470 का थ्री रियल. एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 61151 का थ्री रियल. ये थे आज के गोल्ड रेट. सोना लेना हो या ना, लेकिन भाव पे नजर ना हमेशा रहनी चाहिए. और देखिए ये जो कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप, कंसिस्टेंटली ये गिरते जा रहा है, शायद आपके काम का हो. व्हाई नॉट. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल्फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर. माय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम गोल्ड बार्स
3: एंड अर्न कतर एयरवेज एवियोस टुडे.
2: विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: हिट गाना सुनना आसान है, ये समझना मुश्किल है कि वो हिट आखिर क्यों हुआ। और वही तो हम करते हैं हर हफ्ते के वो 20 गाने जो सबकी जुबान पर है, लेकिन मैं सिर्फ उनका काउंटडाउन नहीं करता, मैं उनके पीछे की कहानी ढूंढता हूँ। किस आवाज ने गाने को पहचान दी, किस कैरेक्टर ने उसे यादगार बना दिया, और कैसे एक गाना फिल्म से निकलकर हमारी जिंदगी में उतर गया। Hey, this is the Mirchi Top 20. मैं हूँ सुरेन, गाने आपके, कहानियां मेरी, and we kickstart the countdown with गाना नंबर 20, ऊंचा लंबा कद, the rehashed version from Welcome to the Jungle.
4: Number 20.

फुल ऑन मसाला, फुल ऑन मैडनेस, चाहे 2007 हो या 2026। लेकिन बॉलीवुड पिछले 10-15 साल में एक अजीब फेज से गुजरा है। कभी स्केल, कभी VFX, कभी स्पेक्टिकल, जैसे फिल्म को यादगार बनाने के लिए सब कुछ बड़ा होना जरूरी था। लेकिन अब शायद फिल्म मेकर्स को समझ आ रहा है, फिल्म बड़ी नहीं, कहानी और कैरेक्टर्स अनफॉरगेटेबल होने चाहिए। रणवीर का एनिमल, रणवीर का धुरंधर, और फिर एक ऐसे एक्टर जिनके कैरेक्टर्स ने ये काम सालों पहले ही कर दिया था। द नेम इज अजय देवगन, चाहे वो ओमकारा बने। अरे

0: या फिर बाजीराव सिंघम। दीज आर अजय देवगन्स टू मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स, लेकिन मेरे लिए पर्सनली विजय साळगांवकर ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। दृश्यम ने दिखा दिया कि ऑडियंस को सीट से बांधे रखने के लिए VFX, explosions इनकी जरूरत नहीं है। एक आदमी, एक सीक्रेट और एक किलर कैट एंड माउस गेम ही काफी है। और आयरनी देखिए, दृश्यम की फिल्में अपने म्यूजिक के लिए कभी याद नहीं की गई। एंड बिफोर आई गेट टू दृश्यम, ये बता दूं कि नंबर 19 पर अजय सर का एक और अवतार हमने देखा था इन धमाल 4। उसका गाना साड़ी हैपेंस टू बी गाना नंबर 19। लेकिन गाना नंबर 18, वेल दृश्यम की दुनिया, वहीं से पहला गाना निकल कर आ रहा है। दिस इज विंगंसा, सिद्धार्थ बसरूर की आवाज में, रवि बसरूर का म्यूजिक, आमिर खान के शब्द, फ्रॉम दृश्यम द कंक्लूजन।
1: नंबर 18।
2: दृश्यों के बाहर नजरों को डाल, संभल कर चलना और खुद को

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
1: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही
1: हाँ,
2: मैं तो चल रही है।
1: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
1: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं, वो बंदे राजस्थान से आने थे वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
1: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
1: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
1: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
1: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
1: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
2: हेलो हेलो,
1: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये? है
1: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर? हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन कर तो यहाँ क्यों लेके आए तुम?
3: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 16।

शरारत इन द वॉइस ऑफ जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुबंती बागची, एकदम अनअपोलोजेटिक बॉलीवुड मैडनेस। और शायद इसलिए ये गाना याद रह जाता है, लेकिन एक गाना काउंटडाउन से बाहर हो चुका है। इसका एग्जिट मुझे जेन्युइनली सरप्राइज करता है। तो फिर आओ ना, आवारापन 2 के 3 गाने अभी भी चार्ट्स में हैं, लेकिन आवारापन की ओरिजिनल फिल्म का ये गाना तो फिर आओ अब इस काउंटडाउन पे नहीं है। एंड मुझे लगता है इसका एक रीजन है। कभी कभी किसी गाने को अच्छा सिंगर नहीं, सही आवाज चाहिए होती है। उसमें एक खास मैस्कुलिन वजन की जरूरत थी, एक ऐसी आवाज जो हार्ट ब्रेक को फील भी करे और कैरी भी करे। Somehow I always thought के यार ये गाना एक सिंगर की आवाज में बहुत अच्छा लगता, and that singer is Fahim Abdullah। अगर कोई इस गाने को वो पुरानी रूह, वो डार्कनेस और वो अच्छी पकड़ दे सकता था, then in my eyes I thought it could have been Fahim। और फिर फहीम ने अपने सोशल मीडिया पर इसका एक कवर गा के डाल दिया।

0: बस दर्द वही है, लेकिन आवाज का वजन बदल गया और गाना भी। और शायद इसलिए आवारापन टू का म्यूजिक इतना इंटरेस्टिंग है। ये पुरानी फिल्म को रिपीट नहीं कर रहा है, ये अपनी आवाज ढूंढ रहा है। लेकिन जिन्होंने तो फिर आओ गाया है इन आवारापन टू, उनका डेब्यू सॉन्ग हैपेंस टू बी वे जुनून, कंपोज्ड बाय दिस जीनियस कॉल्ड मिथुन और लिखा है सईद कादरी साहब ने। दिस वन इज अ नंबर 15 फ्रॉम आवारापन टू।
1: नंबर 15।

0: Only on Mirchi. It's hot.
1: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Mirchi stories.
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी
4: यार। तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
5: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
11: Number 14.

0: सांसों की माला पे, मिर्जापुर की पूरी एल्बम में मेरा सबसे फेवरेट गाना। और इसकी कहानी बहुत पुरानी है, मीराबाई और कृष्ण जी के बीच जो एक समर्पण की लोक कथा है, ये कॉम्पोजिशन उस एहसास से जुड़ा हुआ है। और ये मास्टरपीस तुफैल होशियारपुरी नाम के कवि को एट्रिब्यूटेड है। लेकिन जिस आवाज ने इस कॉम्पोजिशन को पूरी दुनिया की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बना दिया, वो आवाज थी उस्ताद नुसरत फतेह अली खां की। और नुसरत साहब को याद करते वक्त एक डिस्टिंक्शन करना जरूरी है, उनकी कला को सल्यूट करना किसी मुल्क की सियासत को सर्टिफिकेट देना नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक महान आर्टिस्ट का हिसाब चुका रहे हैं, उस इन्फ्लुएंस का जो उन्होंने हिंदी फिल्म म्यूजिक पर छोड़ा। थिंक ऑफ ऑल द सॉन्ग्स, तेरे बिना नहीं लगदा दिल मेरा सोनिया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, निट खैर मंगा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है मेरे रश के कमर, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, मेरा पिया घर आया। यार कुछ रिक्रिएट हुए, कुछ की ट्यून्स को नए लिरिक्स, नए सिचुएशंस और नए नाम मिले, कुछ तो चुराए भी गए, लेकिन इन्फ्लुएंस इतना गहरा था कि नुसरत साहब की मेलोडिक वोकैबुलरी हिंदी फिल्म म्यूजिक का हिस्सा बन गई। और इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है एआर रहमान का एक गाना, जो उन्होंने नुसरत साहब के एक बहुत ही मशहूर गाने सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना से प्रेरित होकर मणि रत्नम की फिल्म गुरु के लिए एक कॉम्पोजिशन बनाई थी। और वो गाना था तेरे बिना, रिटन बाय गुलजार साहब, संग बाय एआर रहमान हिमसेल्फ। दिस हैपेंस टू बी माय पिक ऑफ द वीक।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: खट खट
2: हू देयर
1: हू
2: आर यू हू
3: अरे हू आर यू लुकिंग फॉर मैडम
2: खट खट हू देयर
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: तमन्ना भाटिया,
1: वी हैव अ प्रॉब्लम। एंड पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ, मुझे तमन्ना भाटिया के डांस नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये गाना स्त्री का बहुत ज्यादा पसंद है।
2: आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए।
1: एंड देन बैड्स ऑफ बॉलीवुड में ये वाला गाना तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इसके अलावा भी देयर क्वाइट अ फ्यू डांस नंबर्स। एक और याद आ रहा है यार, रेड 2 में गाना आया था नशा करके, एंड तमन्ना इन गानों में कमाल करती है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इनफैक्ट अगर आप बॉलीवुड के बेस्ट डांस नंबर्स की बात करोगे तो तमन्ना का नाम डेफिनेटली टॉप 3 स्पॉट्स में होगा। प्रॉब्लम गानों से नहीं है, प्रॉब्लम इमेज से है, क्योंकि तमन्ना साइंड अप फॉर दिस अपकमिंग फिल्म कॉल्ड वन अलॉन्ग विद सिद्धार्थ मल्होत्रा, जहां पे तमन्ना का एक प्रॉपर एक्टिंग रोल है। लेकिन उसका एक गाना आया है कॉल्ड थुमक थुमक, एंड वहां पर भी तमन्ना भाटिया इज डूइंग द सेम थिंग्स दैट शी डिड इन दी सॉन्ग्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड। वही ग्लैमर, वही अदाएं, वही सेंसुअलिटी, वही स्क्रीन परसोना। देखो, अगर तमन्ना सच में चाहती थी कि ऑडियंस उनको एक पर्टिकुलर इमेज में ना देखे, तो फिर उनको उस इमेज से जुड़ी कई चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए था। एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, इमेज इंडस्ट्री बनाती है, लेकिन उस इमेज को तोड़ने का फैसला एक एक्टर को करना पड़ता है। आप एक फिल्म में कैरेक्टर बनकर आओ और अगले ही मिनट ऑडियंस को वही पुरानी तमन्ना दिखा दो जिसे वो डांस नंबर्स में देखने की आदत डाल चुके हैं, तो फिर ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी, वो बस वही देखेगी जो आप उसे बार बार दिखाते आए हैं। और यही बॉलीवुड का सबसे बड़ा ट्रैप है। पहले वो आपकी एक इमेज बनाता है, फिर उस इमेज को वो हिट बनाता है, और जब आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हो तो वही इमेज आपको वापस खींच लेती है। लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी भी होती हैं जिनसे एक्टर को नहीं पूरी जेनरेशन को कम्पीट करना पड़ता है। श्रीराम की छवि भी उन्हीं में से एक है। पिछले हफ्ते जिस भक्ति की प्रार्थना ने हमें पहली बार दर्शन दिए थे, इस हफ्ते वो नंबर 11 पर है। ये है जय जय राम रामायण
3: नंबर 11।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: सर मैं जब भी घर आता हूँ ना पापा जाग रहे होते हैं, वो सोते ही नहीं है तो क्या करूँ?
2: अच्छा पापा जाग रहे होते हैं तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: ये आवारापन, अरिजीत की आवाज अभी भी उस पुराने आवारापन का दर्द जिंदा रखती है। लेकिन जिस बॉलीवुड में सूरज बरजातिया ने 1989 में एंट्री ली थी यार, वो बॉलीवुड तो आज बिल्कुल अलग है। कैन यू बिलीव इट, 37 साल हो गए हैं लेकिन सिर्फ 10 फिल्म्स डायरेक्ट किए हैं सूरज जी ने। फिर भी सूरज जी ने एक ऐसी दुनिया बना दी जो आज के बॉलीवुड में ऑलमोस्ट एलियन लगती है। यहाँ फैमिली में लोग एक दूसरे को तू तड़ाक करके बात नहीं करते, एक दूसरे को आप कहते हैं, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, लेकिन कोई विलन नहीं होता। अपनी खुशी से पहले फैमिली की खुशी आती है और बदला लेने से ज्यादा सैक्रिफाइस की वैल्यू होती है। सूरज बरजातिया ने इंडिया को आइडियलाइज नहीं किया, उन्होंने एक आइडियल इंडिया इन्वेंट किया। और सवाल यह है, इतना बदल चुके बॉलीवुड में क्या इस दुनिया के लिए अभी भी जगह है? इसका जवाब हमें मिला सूरज बरजातिया से।
1: Somewhere I feel complete now. Even after so many years, people come here like this to see my cinema. My daughter is there, my son-in-law is there with the family, my sons are there, their in-laws are there. I have 2 granddaughters at home. So somewhere अब मैं कुछ देना चाहता हूँ। Honestly, this is one of the most progressive films of mine, keeping my values intact. And director वही होता है जो कुछ कहना चाहता है। So I just want to convey in this film how the generations can stay together. Of course, मैं कहीं फंसता हूँ हर फिल्म में, बिकॉज मैं गुडनेस में और गुडनेस करना चाहता हूँ, तो वो मेरे अपने इश्यूज है, बट दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड फेवरेट फिल्म्स।
0: जेनरेशंस को साथ रखना और अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किए बिना उन्हें आज के सिनेमा में लेकर आना, शायद सूरज जी की सबसे प्रोग्रेसिव बात यही है कि उन्होंने वक्त के साथ अपनी वैल्यूज बदलने से इनकार कर दिया और अब इसी दुनिया में मेलेडी लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड के अल्टीमेट हिट मशीन, द मैन हु कोलैबोरेटेड विद सूरज बरजातिया ऑन प्रेम रतन धन पायो, हिमेश रेशमिया। नंबर 9 पर डेब्यू हो रहा है ऑफ द टाइटल सॉन्ग ये प्रेम मोल लिया, संग बाय निहाल टोरो एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया श्रेया घोषाल। नंबर 9।

0: tonight. We'll be frontin' on the lines. Relax, honey. Get it?
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Mirchi.
3: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nafis wala murga. Mirchi, murga.
4: Hello.
5: Hi. Ye से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
4: हेलो।
5: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
6: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
4: वही मैं सुधरा था, मतलब।
5: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
4: हाँ जी।
5: कुकड़ों को
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ। डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
8: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
7: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
9: खट खट।
10: कौन है?
9: अज्जू।
10: अज्जू कौन?
9: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
10: खट खट, हू दैट?
2: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।
1: Only on Mirchi. It's hot. Number 7.

तबाही नाम का गाना खत्म जरूर हुआ है, लेकिन असली तबाही तो सलमान खान ने मचाई हुई है। भाई ने बिग बॉस पर उन ट्रोल्स और उन जर्नलिस्ट को सीधा निशाने पे ले लिया जिन्होंने क्रिटिसिज्म और कैरेक्टर असैसिनेशन के बीच की लाइन ही मिटा दी थी। फिल्म बुरी है तो बोलो, एक्टिंग खराब है फिर भी बोलो, अगर वजन मेरा बढ़ गया है उस पर भी बोलो, लेकिन पर्सनल होने का लाइसेंस वो किसी को नहीं मिला है। और फिर सलमान खान ने उन जर्नलिस्ट को भी कॉल आउट किया जो एक्ट्रेसेस की तस्वीरें खींचकर उनके बॉडी पार्ट्स को जूम करके सोशल मीडिया पर बेचते हैं। उसे जर्नलिज्म कहना जर्नलिज्म की इंसल्ट होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं है, दैट इज चीप वॉयरिज्म। और जर्नलिस्ट या पत्रकार नाम का शील्ड पहन लेने से वो रिस्पेक्टेबल नहीं हो जाता। और मुझे सबसे ज्यादा मजा एक आयरनी में आता है, बॉलीवुड में लाइन क्रॉस करना सलमान खान से बेहतर कोई नहीं जानता है, लेकिन इस बार भाई ने लाइन क्रॉस नहीं की, भाई ने एक नई लाइन खींच दी है। और जब कोई इंडस्ट्री के अंदर से इस टॉक्सिक कल्चर को रोकने की बात करता है उसे क्रेडिट मिलना चाहिए। बाय द वे, द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द चार्ट्स इज चुनरी चुनरी, जो है फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, लेकिन ओरिजिनल वाले में सलमान भाई का स्वैगर याद है। नंबर 6।

0: 12, आज उसी भाई के नाम, सलमान खान के नाम, मेरा रीवाइंड ट्रैक। वो बात जो जर्नलिस्ट एंड ट्रोल्स की क्लास लगाने के बाद वो बिंदास बोल सकते हैं। बॉलीवुड, मैं हूँ हीरो तेरा।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
5: मिर्ची इट्स हॉट
6: खटखट
7: कौन है
6: दवे
7: दवे कौन
6: द वे यू लव मी आई हाय मर जावा
7: खटखट हू दैट
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5।

0: अमित त्रिवेदी का ये गाना बिना किसी एफर्ट के मूड हल्का कर देता है। लेकिन रोमांस की दुनिया में एक इंटरेस्टिंग चेंज जरूर आया है। पहले रोमांटिक गाने आते थे और उसके साथ में लव स्टोरी भी मिल जाती थी। प्राइम एग्जांपल फॉरएवर विल बी दिस सॉन्ग।
1: हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना।
0: फिर हमें रणबीर और दीपिका दिखे। सिर्फ पिछले साल हमें एक लव एंथम भी मिला।
2: सही

0: बाहर निकल गया है। कपल वीडियोस, हार्ट ब्रेक एडिट्स, वेडिंग मोन्टाजेस, अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी यादें। मिर्जापुर ने सिर्फ गाना दिया था, इंटरनेट ने उसका रोमांस लिख दिया। और शायद आज रोमांटिक गानों की डेफिनेशन भी बदल रही है। पहले गाना आपको लव स्टोरी दिखाता था, आज गाना आपको अपनी लव स्टोरी दिखाने की जगह देता है, क्योंकि एवरीवन इज द डायरेक्टर ऑफ देयर ओन लव स्टोरी। और अपनी कहानी में सब शाहरुख खान है। और वही गाना रोमियो शेख खुशाल की आवाज में मिर्जापुर द मूवी में एक नई जिंदगी लेकर आ रहा है। ऑन नंबर 3, probably the fastest climber of the Mirchi Top 20, ye hai Varun Forever.
1: Number 3.
2: Paan

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: द लेट इरफान खान से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है, इज इट दिल्ली, इज इट मुंबई?
4: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
3: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
11: Number 2.

गहरा हुआ सुनते ही वो बर्फीली पहाड़ियां, रणवीर सिंह, सारा अर्जुन एक बाइक पे बैठे हुए, वो सारे विजुअल जहन में आ जाते हैं। और शायद ग्रेट फिल्म सॉन्ग्स की एक खूबसूरत क्वालिटी यही होती है कि आवाज, गाना और चेहरा एक ही याद बन जाती है। लेकिन बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे भी हैं जहां गाना याद रह गया लेकिन चेहरा बिल्कुल नहीं याद आता। और कभी कभी इसका रीजन सिंपल है, कास्टिंग इज ऑल रॉन्ग, गलत है।

ये गाना आई एम श्योर कि आपकी प्लेलिस्ट में आज भी मौजूद है। इस गाने का नाम है मौला मेरे मौला फ्रॉम द फिल्म अनवर और इसे बनाया था मिथुन ने। गाना आज भी जिंदा है, लेकिन ऑनेस्टली एक सवाल का जवाब बताओ, क्या आपको इसके हीरो याद है? नहीं ना? लेट मी टेल यू द नेक्स्ट सॉन्ग।

0: अरे खूबसूरत गाना साइबो फ्रॉम शोर इन द सिटी, एंड ये गाना कितने लोगों को याद है, लेकिन फिल्म कितने लोगों को याद है? फेसेस तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ऑडियंस कभी कभी गाने को एक्टर से आजाद कर देती है, लेकिन इसका ऑपोजिट भी होता है जब कास्टिंग इतनी परफेक्ट होती है कि गाना सुनते ही एक्टर की आंखों में वही इमोशन दिखने लगता है जो सिंगर की आवाज में हम सुनते हैं। शायद इसलिए आज का जो नंबर वन गाना है वो नंबर वन पे है, क्योंकि जब जब आपके कानों में तेरा मेरा रिश्ता नाम की आवाज गूंजेगी, इमरान हाशमी का चेहरा आपकी नजरों के सामने होगा, पूरे हार्ट ब्रेक के साथ, उस दर्द के साथ। बिल्कुल उसी इंसान के लिए बना हुआ ये गाना। इट इज नंबर वन वंस अगेन अनडिस्प्यूटेड ऑन द मिर्ची टॉप 20। तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज
1: नंबर वन।

0: हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत किसी रिश्ते को बनाता है वक्त। अनफॉर्चुनेटली मेरा वक्त इस शो पे अभी खत्म हो गया है, एंड दैट ब्रिंग्स अ क्लोज टू दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20। ये वादा है कि मैं आपको फिर मिलूंगा यहीं ऑन द मिर्ची टॉप 20, 20 गानों के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। अंटिल देन, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
2: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
3: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

أشهد أن لا

हाँ तो जी, हम कह रहे थे कि बैंगल्स गाना खत्म हुआ संजू राठौड़ की आवाज में, लेकिन हम बात करेंगे उस वॉच और ज्वेलरी एग्जीबिशन की जो हमारे कतर की शान है, 22nd एडिशन ऑफ दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन। इस बार इसमें कुछ नया हो रहा है। यस, हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ हिज एक्सीलेंसी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कतर टूरिज्म एक साथ इस 22nd एडिशन में एक ऐसी चीज लेकर आए जो इससे पहले एडिशंस में नहीं थी। 28 सितंबर से 3 अक्टूबर DCC में होने वाले DJWE बोले तो दोहा ज्वेलरी वॉच एग्जीबिशन में इस बार आपको अर्ली एक्सेस का एक्सक्लूसिव टिकट भी मिल रहा है। वेल, इस साल के एडिशन में यह सबसे खास बात है कि आप अर्ली एक्सेस टिकट ले सकते हैं एट $100 पर टिकट एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। पहले 500 लोग ठीक दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच ऑन द ओपनिंग सेरेमनी देख पाएंगे वो सारी चीजें जो जमाना बाद में देखेगा। तो दोहा ज्वेलरी वॉचेस एग्जीबिशन जो कि कतर टूरिज्म लेकर आता है, विजिट कतर लेकर आता है विद QNB ग्रुप, इस बार ऑफिशियल स्पॉन्सर है एंड आई एम वेरी श्योर DJWE आने वाले टाइम के लिए स्टाइल स्टेटमेंट लेकर आता है वॉचेस लेकर ज्वेलरी तक, जो दुनिया की नायाब चीजें हैं वो आप देख पाते हैं। तो अगर एक्सेस पैसा है तो दोस्त अर्ली एक्सेस टिकट लेकर जाओ एंड इस DJWE का हिस्सा बन जाओ। 89.6 मिर्ची 1, हम तो सेकंड हैंड से काम चलाएंगे, अभी बजट बहुत कम है सर, मिर्ची इट्स ऑट।

Man. Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओ टू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
1: Hello,
2: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
1: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
1: हाँ जी.
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
1: किसी की पता नहीं किसकी थी.
2: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
1: मैंने क्या किया था?
2: आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे तीन लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरिया से एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है, आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
1: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
1: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
1: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई मेरे पास.
2: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
1: है. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
2: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
1: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
2: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
1: हाँ बताइए
2: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
1: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे
1: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: खटखट.
5: Who that?
4: जाहिर.
5: जाहिर. जाहिर हूँ.
4: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं.
5: खटखट. Who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन में ज्यादा यकीन करते हैं या अपने क्लास टॉपर्स की तरह पहले से प्रिपेयर? वेल, अब आपको ये खुद चुनना है कि आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे टॉपर्स वाला रास्ता बहुत अच्छा लगता है, वो पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं। अब आपको पता है फेस्टिवल्स आने वाले हैं, खर्चे काफी ज्यादा होंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अभी से अपनी गोल्ड खरीदने की प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो भाई साहब? यस, हम आपको बता दें, आप अभी से अपने गोल्ड रेट को लॉक इन कर लो। तनिष्क लेकर आया आपके लिए एक अमेजिंग सॉल्यूशन, जहां पर आप अपनी फेवरेट फेस्टिव ज्वेलरी को अभी से बुक कर सकते हैं एंड आपको पे करना है सिर्फ और सिर्फ 20% इन एडवांस, और आपको मिलेगा बुकिंग डेट या बिलिंग डेट के बीच लोएस्ट गोल्ड रेट का फायदा। हाँ जी, इसे कहते हैं अपने स्मार्ट दिमाग का स्मार्ट यूज। तो मान लीजिए अब आपको लग रहा है कि फेस्टिवल आएंगे, गोल्ड रेट बढ़ने वाले हैं, हमारे पास और भी खर्चे होंगे, तो मैं कहता हूँ टेंशन खत्म होगी ना, अब आप सेविंग ही सेविंग करोगे। मान लो आपको कुछ पसंद आया, जाइए फटाफट से अभी से 20% एडवांस देके बुक कर लीजिए और फिर इंतजार कीजिए जिस दिन आपको ये लेना है, उस डेट से लेकर बिलिंग डेट के बीच का लोएस्ट गोल्ड रेट आपको लग जाएगा। एंड दिस स्पेशल ऑफर इज टिल 8th of November। रिमेंबर, आप 8 नवंबर 2026 तक ही इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो बस आज ही नियरेस्ट तनिष्क पे जाइए एंड आज ही जाके बुक कर दीजिए और उसी दिन लेकर आइए जब आपको लगे कि अब मौका है फेस्टिवल को और खूबसूरत बनाने का और अपनी वाली को और खुश करने का। 89.6 मिर्ची वन मस्त मौला गौरव आपके साथ मिर्ची।

0: हाँ जी, तो मिर्ची पर मेरे साथ यहाँ पर है सिंगर उन्मेष, बहुत सारे गाने सुना रहे हैं, बांग्लादेश से है। एंड एक खास बात, इनसे जब मैंने पूछा कि आपको लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट कौन सा मिला, तो कोई खास बता रहे हैं। उन्मेष, क्या था वो मोमेंट, बताइए।
1: So back in 2019, I got a ticket from my university.
0: Okay.
1: So that ticket was the like ये शो का सबसे पीछे वाला ticket था। तो मैंने क्या किया,
0: धीरे-धीरे भाई लड़के हैं भाई, आगे आ जाते हैं।
1: तो जाते-जाते I just sang with my dream, Shankar Mahadev sir.
0: शंकर महादेवन जी के साथ गा दिया, मतलब बैक बेंचर से टॉपर बन गए
1: एकदम टॉपर।
0: तो वो कौन सा गाना था?
1: He praised me on stage and like he took me on stage and I sang so many songs with him on that show and that was my first dream comes true and like then I started dreaming
0: कि अब मैं भी करेगा, मैं भी कुछ बनेगा सिंगर। And here you are, मिर्ची पे मस्त मौला गौरव के साथ, let's hear it from you.

0: एंड यार अब मैं समझा शंकर महादेवन जी क्यों इतना दीवाने हो गए. यू हैव अ वेरी गुड वॉइस एंड आलाप. संगीत कहाँ सीखा?
1: आई हैव लर्नड म्यूजिक थ्रू माय मॉम. मेरे मम्मी को अम्मू कहता हूँ. तो मेरे अम्मू ने ऐसा किया कि मैं बचपन में बहुत शरारत, तो वो ऐसा करते थे कि तू ऐसे नहीं करेगा तो ठीक है मैं तुमको गाना सिखाऊंगा. कैसे गाना गा सकते हैं.
0: ओके,
1: तो द वे शी टॉट मी दैट लाइक ओके आई कैन सिंग लाइक दिस एंड दैट एंड इट हैपेंड लाइक अ मैजिक.
0: वाओ, और वो मैजिक आज आप सब सुन पा रहे हैं. एंड थैंक्स टू हिज मॉम जिन्होंने इसे सिखाया ताकि वो हम सबको एंटरटेन कर पाए. एंड थोड़ी एक आखिरी बार सुनेंगे उन्मेष की गिटार और उनकी आवाज मिर्ची पर. इट्स हॉट

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
6: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
5: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

0: 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ, और मेरे साथ सिंगर उन्मेष बने हुए हैं। बहुत सारे नगमे तराने छेड़ दिए हैं, गा रहे हैं, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया वन ऑफ माय फेवरेट, अब उन्मेष को गाना ही पड़ेगा। भाई तैयार हो?
1: Sure, obviously.
0: Okay.
1: Of course.
0: Here you go. 1, 2, 3, start.

And that's what I call performance. उमेश दिल पे दिल दिमाग और सब जीत जा रहे यार। एंड एक आखिरी बार उमेश को सुनेंगे यही 89.6 मिर्ची वन पर। ऐसी संगीत की महफिल सजी रहेगी। इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
2: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
1: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Khat khat.
6: Kaun hai?
5: Ishant.
6: Ishant kaun?
5: Ishant Gadadhari Bhim, Ishant.
6: Khat khat, who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1.
8: Mirchi,
7: it's hot.
8: It's hot. It's hot.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं। फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 मिर्ची 1 पर मस्मोल और गौरव आपके साथ, सिंगर उन्मेश हमारे कतर के टैलेंट बांग्लादेश से, एंड कह सकते हैं जब यहाँ पर महफिल सजी गई है संगीत की तो एक बार फिर से उन्मेश तैयार है आप?
1: Yeah, sure.
0: Okay, तो अगली पेशकश उन्मेश की एक और.
1: So basically this song is one of my most favorite track.
0: Oh wow.
1: It's from Nusrat Fateh Ali Khan sahab.
0: क्या बात है, the legend.
1: Yeah.

ये तालियां भी कम पड़ेंगी इस परफॉर्मेंस के आगे, और इसीलिए तो सिंगर बिल्कुल अलग होते हैं यार। ये अपनी साधना में लीन होते हैं और बता देते हैं कि उन्होंने क्या पाया है अपने इस तप से। और सुनेंगे यहीं पर मिस्टर उन्मेश को, ओनली 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, buscabana, sacabana. Burca, burca. La fiertă la burca. Milci, burca.
2: हेलो हाँ जी बोलिए
3: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
2: आप बोलिए ना
3: कॉल आपने किया आप बोलिए
2: कॉल मैंने किया है हेलो
3: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
3: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
3: नींद में क्या
2: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
3: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
2: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
3: तेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
3: हेलो
2: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
3: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
2: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
3: फोन नहीं कर रहा अभी
2: आप देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गया मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
3: चप्पल
2: पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
3: जीना आराम कर दिया तुम
2: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
3: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है
7: कैसे रुक सकता है
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
4: FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: जब पैसे पास में हो और आप खर्चा ना कर पा रहे हो तो इन्वेस्ट करो ना यार।
1: मस्त मौला गौरव
0: 89.6 पर जीवन पर मैं हूँ आरजे मस्त मौला गौरव, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब पैसे एडिशनल पड़े हो और आप उसको वाकई में कुछ भी ना कर पा रहे हो तो बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट होता है। एंड ऐसे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अल्फरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट।
2: गोल्ड अपडेट।
0: अल्फरदान एक्सचेंज जो हमारे कतर में लेकर आते हैं स्विस सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड का भरोसा, वो पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार आपको मिलेगा 576 कतरी रियाल, पैम्प 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 2699 कतरी रियाल, पैम्प 10 ग्राम आपको मिलेगा 5329 कतरी रियाल में, पैम्प 1 औंस गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 16470 एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार 61151। मस्त मौल ही कहेगा ऐसे स्विस सर्टिफाइड गोल्ड जब आप अपने पास रखते हो 24 कैरेट तो आपको ये भरोसा होता है कि जब भी आप चाहोगे ये फटाक से कन्वर्ट हो जाएंगे एंड आपके इन्वेस्टमेंट का सेफेस्ट रिटर्न आपको मिल जाएगा। ये था मस्त मौला गौरव का 89.6 मिर्ची वन पर अल्फरदान एक्सचेंज का गोल्ड रेट मिर्ची।
2: Stay ahead of today's gold rates with Alfardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars and earn Qatar Airways Avios today. Visit our branches or download the app now.

पता है किसी भी हैप्पी फैमिली का एक सबसे बड़ा सपना सबसे पहले क्या होता है बताते हैं। वो सपना होता है हमारा एक खूबसूरत घर हो। वेल, और खूबसूरत घर जब आप कतर जैसी कंट्री में रहते हैं, यहाँ पर बहुत सालों तक रहते हैं, यहाँ पर ही आपकी जिंदगी का बहुत हिस्सा बीतता है, तो आपको लगता है कि यार यहाँ के रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट करके अपने लिए एक शानदार घर खरीद लें। तो मौका आ रहा है 27-29 अक्टूबर के बीच। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि अकरात है कतर की, उन्होंने कह दिया है 4th एडिशन ऑफ कतर रियल स्टेट फोरम 27-29 अक्टूबर दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में लगने जा रहा है। इसके पार्टनर अकारात एंड इनफॉर्मा थरावत, वेल ये दोनों मिलकर इसे होस्ट करेंगे एंड दिस विल बी अंडर द पेट्रोनेज ऑफ हिज एक्सीलेंसी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जैसिम अल थानी, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। एंड बोल सकते रियल स्टेट का ये कैसा फोरम होता है जहां पर रियल स्टेट में होने वाले फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, सेल्स के लिए क्या नए स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही है, किस तरह से आप परचेज कर पाएंगे प्रॉपर्टीज को, एंड रियल स्टेट किस तरह से एक मजबूत पिलर बन रहा है किसी भी मुल्क की तरक्की का, यही दिखाने का एक तरीका है। एंड आई एम श्योर यहां पर आप अगर जाते हैं तो आप इस फोरम का हिस्सा बनकर ऐसी बहुत सारी रियल स्टेट की प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान पाएंगे जहां पर शायद आपका वो ड्रीम होम छुपा हो। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
6: Arre wah, ice cream and cake lovers, ready ho jao. Dairy Queen laya hai dhamakedar special promotion.
7: Hanji, 26th se 30th September tak enjoy karo amazing deals. Sunday sif QR 5 se, Swirls QR 9 mein, Blizzards QR 10 se aur cake sif QR 60 se.
6: To der kis baat ki, apne favorite Dairy Queen outlet par jao aur sweet moments banao. Dairy Queen, happy tastes good. To der kis baat ki, sab kuch aadhe price mein.
8: कौन है?
9: स्टेन।
8: स्टेन कौन?
9: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
10: खट खट, who that?
11: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

यार लाइफ में ना कभी कभी पॉज लेना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब रेस्ट। हम इस भागती दौड़ती जिंदगी में अपने आप को एकदम तपा देते हैं, लोहा बनाने की कोशिश करते हैं, पर फिर आती है हमारे हेल्थ पे तो हम कहते हैं भैया लोहा नहीं बन सकते, ऊपर वाले ने जो इस मिट्टी का शरीर दिया है इसको थोड़ा रेस्ट दे देते हैं। एंड ऐसे ही रेस्ट लेने का डिसीजन लिया है सुहानी ने, एंड दी मेंटली सुहानी शाह जो हमारे कतर में इस फ्राइडे आने वाली थी वो अब दिसंबर में आने वाली हैं। यस, मैं आपको बता दूं उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्होंने अपना सिंगापुर शो कैंसिल किया, लेकिन कतर के शो के लिए वो पोस्टपोन कर रही हैं। एंड शी सेड शी विल कम अगेन इन दिसंबर, एंड आई एम श्योर वो शाम जो हमने इस फ्राइडे इमेजिन की थी वो अब दिसंबर की एक शाम बनेगी। लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में ना कभी कभी हमें पॉज लेना चाहिए, अपने आप को रोकना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में ना इतनी भागदौड़ में लग जाते हैं कि ऊपर वाले तक को हमें याद दिलाना पड़ गया था, भूल गए 2020 जब कोविड कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को रोक दिया था। भाई ऐसी सिचुएशन ना, इसलिए जरूरी है कि आप खुद से ही अपने शरीर को थोड़ा आराम दें, थोड़ा रेस्ट करें, क्योंकि ना ये ऊपर वाले का दिया शरीर है सर, हम इसे लोहा बनाने की कोशिश तो जरूर करेंगे लेकिन है तो ये मिट्टी का, इस बात को हमें समझना भी जरूरी है। इसी उम्मीद में कि अब आने वाले टाइम में वो बहुत तेजी से अपनी हेल्थ को अच्छा कर रही हैं, एंड वी शुड ऑल कीप हर इन आवर प्रेयर्स, एंड सुहानी गेट वेल सून, यही है मैसेज कतर का आपके लिए। एंड हम आपको देखना चाहते हैं, जबरदस्त आपकी उस परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, बट हमें पता है आप रेस्ट ले रही हैं, गेट वेल सून 89.6 मिर्ची वन से। फिलहाल हम जा रहे हैं घर, हम भी रेस्ट लेंगे, कल लौटेंगे शाम को फिर से एनर्जी के साथ, शाम शानदार में। अभी भी तब तक ले मां सलामा मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: I like that song.

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप. बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना हो, किसी काउंटडाउन की रैंकिंग के बारे में कोई सवाल, बिंदास आके हिट मी अप. हफ्ते के टॉप 10 गानों के काउंटडाउन में एक नई एंट्री है. शो पर हम अपना 90s एंड 2000 का इंडी पॉप क्लासिक बजाने वाले हैं. सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10. संजय राठौड़ की आवाज की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे गाना. 16 हफ्ते हो गए हैं इसको काउंटडाउन पर. बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद रोमांटिक बैलेड ऑफ द सीजन, राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज जी की आवाज में. राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन, दिस वन हैज टेकन इंटरनेट बाय स्टॉर्म. गाने का नाम है दरमिया. मुसाफिर कैफे शो से है ये गाना एंड अपेरेंटली इट्स अ लव सॉन्ग ऑफ द सीजन. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दरमिया, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. एंजॉय. नंबर 10.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Ya bana.
2: Murga, murga. Nafiyat wala murga.
3: Mirchi, murga.
4: हेलो
5: हेलो विनीत जी।
4: हाँ जी
5: विनीत जी, नमस्कार। जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
4: सही। हाँ मैं तो चल रही है।
5: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने हैं बैंड के लिए?
4: 7:30 बजे तक।
5: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
4: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
5: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाला एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
4: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
5: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
4: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
5: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
4: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
5: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
4: मैं घोड़ी तो चढ़े जाऊंगा यार।
5: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
4: हेलो हेलो।
5: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
4: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
5: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
4: अरे कॉफिन ऑफिन कर तो यहाँ क्यों लेके आए तुम?
6: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप मुर्गा मन मानिए।
4: अच्छा भैया आप मेरे
7: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
8: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
9: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: खट खट।
11: Who there?
10: बनता।
11: बनता who?
10: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
11: खट खट। Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
12: Gana Indie Top 10.
0: Gana Indie Top 10.
13: Kanika ke saath on Mirchi.
14: Number 7.
15: How chup

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, सुनी की कॉम्पोजिशन, हर्ष का म्यूजिक, गाने का नाम है साड़ी सुन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। उससे पहले एक नई नवेली एंट्री, KDS 54 एंड रॉन का गाना फीचरिंग श्रेया घोषाल, गाने का नाम है कल्याणी। इस गाने ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 8।
1: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इन टॉप 10 गानों के बाहर इंडिपेंडेंट म्यूजिक की दुनिया इतनी डाइवर्स, इतनी वास्ट है, ऐसे इतने आर्टिस्ट, इतने गाने हैं जो शायद अभी तक आप तक पहुंचे नहीं है, लेकिन जिस दिन आप इस गाने को सुन लेंगे यू विल बी लाइक ये कहां था अभी तक। फरक का तारे ऐसे एक गाने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तारे उन गानों में से है जो धीरे धीरे लोगों ने डिस्कवर किया, इतना पसंद आया दैट हमारे काउंटडाउन में टॉप 10 पर है। बट आई ट्रूली बिलीव दैट वी लिव इन अ टाइम जहां हम जो भी ढूंढना चाहें हमको सब मिल जाता है। इंटरनेट, AI, तो आपको इसके आगे और क्या सर्च करना चाहिए, 10 मोर थिंग्स यू शुड नो अबाउट इट, सब कुछ बता देता है। तो इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में हमारी क्यूरियोसिटी इज अ बिगेस्ट करेंसी। क्यूरियोसिटी टेक्स अस टू प्लेसेस, एंड अगर यू आर वन ऑफ दोस क्यूरियस पीपल जिनको नए आर्टिस्ट, नए गाने डिस्कवर करने हैं, वो गाने जो अभी तक आपके एल्गोरिदम के थ्रू आप तक नहीं पहुंचे, देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड विजिट गाना डिस्कवर। ऑल द न्यू प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट एक साथ क्यूरेटेड फॉर यू, हिंदी के साथ साथ पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं, एंड 10/10 गारंटी लेके कह सकती हूँ व्हेन यू लिसन टू दोस सॉन्ग्स यू विल बी लाइक यार ये गाने अभी तक मुझे किसी ने क्यों नहीं सुनाए। सो फॉर ऑल यू क्यूरियस बेस्टीज, गाना डिस्कवर इज अ प्लेस फॉर यू। नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो भी उस प्लेलिस्ट में है। गाने का नाम है तारे, रिटन एंड कंपोज्ड बाय फरक, फरक का ही म्यूजिक। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार तारे इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद कृष्णा धंधन्योलीवाला का गाना बूम शाका, पिछले हफ्ते से एक नई, दो नई, तीन पोजीशन ऊपर जंप मार के बूम शाका इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दोनों गाने बैक टू बैक, फरक का तारे ऑन नंबर 6, बूम शाका ऑन नंबर 5, ओनली ऑन गाना इंडिया टॉप 10। बद्दी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 6।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: Blana, Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
4: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
3: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
6: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
5: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
7: Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Al Fardan Exchange.
8: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Al Fardan Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
9: Khat khat.
10: Who that?
9: Akbar.
10: Akbar who?
9: Are Akbar bata diya hai, bar bar nahi na bata payenge.
10: Khat khat, who that?
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
0: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath on Mirchi.
11: Number 4.

0: बंजारा दी आर्टिस्ट का गाना गारे का नाम है बैरन। 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। आई एम स्टिल नॉट बोर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, अ हरियाणवी पॉप सॉन्ग। आई एम सैट दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @rjkanika। सितंबर जा रहा है, अक्टूबर आ रहा है, एंड आई एम श्योर आपने तो नोटिस कर ही लिया दैट मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने का सबसे पहला सिग्नल ना हमको शाम दे देती है। दिन तो वैसे ही निकलता है, मे बी आप कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, सेम ट्रैफिक, सेम काम, सेम फोन कॉल्स, लेकिन जैसे ही शाम होती है ना हवा बदलने लगती है, रोशनी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, नई आवाजें, नई तरह की आवाजें, मौसम का मिजाज ही बदल जाता है। एक तरफ हम पूरा दिन रैप कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ यू आर रियली excited to start our day. And somehow, यार मुझे पता नहीं क्यों ये शाम का वक्त बड़ा emotional लगता है. Ever since I was a little kid, शाम को खेलने के बाद घर वापस जाना, मतलब sad वाला emotional नहीं, just I am really aware of how I feel in the evenings. So obviously, full feelings वाली playlist भी है मेरे पास for these evenings. And I'm going to play my top pick for you today. गाने का नाम है शाम तन्हा by अग्नि.
2: शाम तन्हा,
0: कुछ तो है इस गाने में दैट हर साल ये गाना मुझे और अच्छा लगने लगता है। मोहन कनन ने जिस तरह से इस गाने को गाया है ब्रो, इट्स लाइक कोई रश नहीं है, ही इज नॉट पुशिंग यू टू फील समथिंग बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील थिंग्स। @rjkanika करेंगे और इंस्टाग्राम पर प्लीज आके मुझे बताना कि व्हाट डिड दिस सॉन्ग मेक यू फील। मैं तो इतना कुछ शेयर कर देती हूँ, इतनी वल्नरेबल हो जाती हूँ यहाँ पे, बट कुछ खास है इस गाने में। इट विल टेक यू बैक टू समथिंग, सम मेमोरी और एन इवनिंग दैट यू विल ऑलवेज रिमेम्बर। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इट्स फॉर ऑल दोस इवनिंग्स जहाँ पर आपको लगा कि कुछ खास हुआ भी नहीं है, बट स्टिल यू फाइंड दैट स्टिलनेस एंड आप उसे कितनी बार भी जी सकते हो। अग्नि द बैंड का गाना, मोहन करण एंड अरिजीत की आवाज में। दिस इज शाम तन्हा प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
2: शाम

I actually have no words for how this song makes me feel. What a beautiful composition. That was Shyam Tanha by Agni. At RJ Kanek on Instagram par, please aao, mujhe batao aisa kaun sa gaana hai जिसमें शाम आपका मेन कैरेक्टर है. मैं ऑनेस्टली ये गाना अपने हर दोस्त को रेकमेंड करती हूँ. शाम तन्हा बाय अग्नि इज माय रेकमेंडेशन फॉर यू. यू सेंड मी योर्स. गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चलेगा. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाले गाने की बारी. इट्स अ डबल वैमी बाय बंजारे बिकॉज उनका नया गाना बरसात 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

أشهد أن لا

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली रियली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। तभी तो इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी।
1: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी।
1: गाने का नाम है तेरा मेरा प्यार बाय द वन एंड ओनली कुमार सानू। ये गाना 2004 में रिलीज हुआ था एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स अबाउट लव एट फर्स्ट साइट। इसकी मेलोडी में राइट देयर इन द कॉम्पोजिशन वो अर्ली 2000s वाली रोमांटिक एनर्जी है, विच इज वेरी इनोसेंट, थोड़ी फिल्मी बट बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड। आई हैव टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू वन ऑफ आवर लिसनर्स आरुष, जो पुणे से हैं। उन्होंने इतनी बार रिक्वेस्ट किया ये गाना। आरुष, दिस वन इज फॉर यू। अकॉर्डिंग टू आरुष, ही इज लुकिंग फॉर लव एंड थोड़ी मुश्किल आ रही है। वो कहते हैं कि यार डेट पे जाने के लिए, बात करने के लिए तो बहुत लोग हैं, बट वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग नहीं आ रही है। सो ही वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस सॉन्ग एंड गो बैक टू दोज सिंपलर टाइम्स, जब लाइफ सिंपल थी और किसी को पसंद करना एक बहुत बड़ी डील होती थी। किसी के फोन के लिए वो पूरा दिन वेट करते थे, उनका नाम स्क्रीन पे देखकर बिना रीजन स्माइल करते थे, फिर रात को सोने से पहले वो सारी कॉन्वर्सेशंस अपने दिमाग में रिप्ले करते थे। आरुष ने मुझे वो नाम बताया, मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट आई ट्रूली फील यू आरुष। दिस सॉन्ग इज लाइक अ टिकट टू सिंपलर टाइम्स, जहाँ बस कॉलेज कैंपस से बस स्टॉप तक जाना, साथ में चलना ही डेट लगती थी। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। रियल लाइफ में आई माइट नॉट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, बट इस गाने में इट वर्क्स आउट। कुमार सानू की आवाज में दिस इज तेरा मेरा प्यार ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

मैन ओ मैन, पहला प्यार, पहली नजर वाला, कुमार सानू की आवाज, ये इतना इमेजिनेटिव है. आई थिंक फर्स्ट लव का जो मेगा मैजिक है वो इसी में है, दैट उस वक्त किसी को पता ही नहीं है दैट ये मेमोरी आपकी जिंदगी की इतनी बड़ी मेमोरी बन जाएगी. कुमार सानू की आवाज में दैट वॉज तेरा मेरा प्यार ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर. आओ 90s एंड 2000s के वो गाने जो आपको आज आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से सिंपल टाइम्स में ले जाते हैं, हमारे साथ आके शेयर करो. मैं और अश्काय माई प्रोड्यूसर, हम दोनों आपके रिकमेंडेशंस का बेसब्री से इंतजार करते हैं. नाउ बैक द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर मी टू टेक यू टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक. बादशाह हितेन शर्वी यादव का गाना, गाने का नाम है बैंगर. 4 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. दिस वीक बैंगर इज ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद मिट्टा रोर का शीशा, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. पिछले 4 हफ्तों से ये गाना नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है. दिस वीक ऑल्सो ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक, बैंगर ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 2.

Yeah, भाई तेरा बस लिख तगाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
3: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
2: This initiative is driven by GWM.
3: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
4: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
3: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान,
0: खान। मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Hi there, what's up? Tell me.
1: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
2: It's so simple man, just don't worry. Part time watchman का काम कर लो, extra income भी हो जाएगी.
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़.

0: कैसे इमोशंस को मेटाफर्स में डाल के अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके हमारे जो गाने लिखने वाले गीतकार हैं लिरिसिस्ट्स, उन्होंने दिल टूटने को क्या बखूबी बयां किया है। सो फॉर एग्जांपल, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, कहीं आग लगे कुछ भी हो जाए गगन गिर जाए लेकिन टूटे दिल की पीड़ को सहना इज उफ बहुत ही मुश्किल।
1: मिर्ची कैफे।
0: वेल, इस टूटे दिल को मैं बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक के द्वारा जोड़ने की कोशिश करूंगी। मैं हूँ पारुल। शो शुरू हो गया है मिर्ची कैफे, ओनली ऑन मिर्ची। अभी आपने सुना ताल से ये ब्यूटीफुल ट्रैक, और ब्यूटीफुल का नाम ले रही हूँ तो मुझे याद आ रहे हैं अमित त्रिवेदी। अगला गाना आपके लिए लेकर आई हूँ ब्यूटीफुल। इस शो पे आज बहुत ही अमेजिंग बातचीत होने वाली है, एक गेस्ट होने वाले हैं स्पेशल मेरे साथ। आप बस यहीं बने रहिए एंड रिमेम्बर, चाहे दिल कितनी भी बार टूट जाए हमारा, लेकिन ना दिल की एक ऐसी छिपकली की पूंछ वाली टेंडेंसी होती है कि फिर से जुड़ ही जाता है हमारा दिल। वक्त लगता है पर जुड़ जाता है। अब आप कहोगे क्या गंदा मेटाफर दिया है इसने यहाँ पर, बट कोई नहीं, गाने अच्छे चला रहे हो आपके लिए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, अभी आ रही हूँ लौट के वापस। इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieta la burga.
1: Milci, burga. Hello?
2: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
1: तो वही मैं सुधरा था, मतलब लगा।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाएं 5,07,339,39। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस। सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
7: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
6: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply.
8: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. चॉइस की लोअर प्राइस पिज्जा बिल्कुल फ्री हो जाएगी। ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम 26th to 30th September। तो टेंशन मत लो, ऑर्डर नाउ फ्रॉम पापा जॉन्स एंड डबल द टेस्टी फन। वैलिड ऑन ऑल पिज्जा साइजेस। पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा।
9: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
10: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: इज फ्रॉम 2004 की एक फिल्म कॉल्ड मीनाक्षी, रीना भारद्वाज की आवाज, राहत इंदौरी साहब के पोएटिक लिरिक्स और रहमान सर का म्यूजिक, ये मैजिकल कॉम्बिनेशन जो बनता है ना भाई इस गाने में, मजा आ गया मुझे सुनकर।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और पता है, रिश्तों की बात करो, ऐसे गूज़बम्स वाली फीलिंग्स की बात करो, और एक तरफ लोग कहते हैं कि भाई जो ये प्यार है, मोहब्बत है, सेल्फ लव पहले आना चाहिए, बिकॉज लव इज नॉट टू बी फाउंड इन समवन एल्स बट इन आवरसेल्व्स। पर मुझे पता क्या लगता है, इस धरती पे जो हम ये सारे लोग भेजे गए हैं, आई डोंट थिंक जो सेल्फ लव भी है वो भी पता चलेगा जब तक आप के पास कोई और ना हो फीलिंग्स शेयर करने के लिए। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि कभी कभी ना खुशी सिर्फ तभी महसूस होती है जब आप उससे शेयर कर सको। होता है ना कि हमें कोई चाहिए बताने के लिए कि यार आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, या कोई पूछने के लिए चाहिए कि ए सुन तू ठीक है। समटाइम्स इट्स जस्ट आपके दिल की बात समझने वाला कोई, फिर आप अपने आप से प्यार करो, खुश रहो, जो भी करो, बट वी नीड पीपल अराउंड अस। नहीं, आफ्टर ऑल दिल बहुत ना समझ है, 10 बार टूट कर भी वही करता है, तो कोई तो चाहिए ना समझाने वाला आसपास। और ये अगला गाना केके की आवाज में, राइट हियर ऑन मिर्ची कैफे। एंजॉय दिस, आती हूँ वापस, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: Cut, cut!
8: Who there?
7: Agarkar!
8: Agarkar who?
7: Agar karna hai to kar, warna chhod de!
8: Cut, cut, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
9: आज शब जो चांद ने है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली, अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली के आज हाथ थाम

0: आज शब जो चांद ने है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली, अंधेरी शह जिंदगी को सूझती नहीं गली, कि आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। अरे भाई, give a loud applause to this beautiful song and lyrics. कमाल करते हैं नहीं लोग, क्या लिखते हैं भाई। खोया खोया चांद फिल्म से आपने सुनाई गाना स्वानंद किरकिरे एंड अजय जिहिंगरन की आवाज में।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और मुझे ना सच में कभी कभी मन करता है कि ये लिरिसिस्ट्स को मैं अपने सामने बिठाऊं और पूछूं कि कैसे लिखते हो इतनी अमेजिंग लिरिक्स। तो बिफोर आई डू दैट, आज मेरे पास इस गाने के लेखक स्वयं स्वानंद किरकिरे जी हैं, और मैं उनसे वो बात पूछने से पहले एक और बात पूछना चाहती हूँ जो बड़े दिन से मेरे दिल के अंदर उमड़ घुमड़ कर रही थी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वानंद किरकिरे जी।
2: मैं एक अदना सा छोटा सा क्रिएटर हूँ, गाने बनाता हूँ, स्वानंद किरकिरे नाम है मेरा, और पारुल के साथ आज बातचीत करने आया हूँ।
0: नमस्ते सर, वेलकम टू रेडियो मिर्ची। और मुझे प्लीज ये बताएं कि क्या रियल लाइफ में भी इतने एक्सक्विजिट और एक्सप्रेसिव होते हैं लिरिसिस्ट्स, जो इतना उम्दा आप लिखते हैं गानों में, क्या रियल लाइफ में भी होते हैं उतने एक्सप्रेसिव?
2: रियल लाइफ में उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते एक्चुअली लिरिसिस्ट लोग, मतलब खासकर अपने भावनाओं के बारे में हम काफी शर्मीले होते हैं, जितने भी लिरिसिस्ट को मैं जानता हूँ। और वो गीतों के जरिए बात इसीलिए कहनी पड़ती है उनको, क्योंकि उनको वैसे बात करनी नहीं आती। जिन लोगों को वैसे बात करनी आती वो गीत क्यों लिखेंगे। थिएटर में, एक्टिंग में, सिनेमा में मैं जब एक्टिंग करता हूँ तो मैं थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हूँ वहाँ पे, लेकिन वो कोई और किरदार बन के, अपने खुद के किरदार में मैं उतना एक्सप्रेसिव नहीं
0: हूँ। यही मुझे पूछना था, बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ डाउट कि जो आप लिख देते हो ना इतना बखूबी, क्या ऐसा बोल भी पाते हो? नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए आप मुझे, प्लीज मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा गाना है जो आपने ऐसे बहुत क्विकली लिख लिया था, और कौन सा था जिसके लिए आपको बहुत वक्त लगा लिखने में?
2: बनने में था तब मैं बहुत वक्त लगा, बहुत वक्त। और बर्फी, आला बर्फी, वो मैंने शायद 5 मिनट में लिखा होगा, 10 मिनट। मतलब मुझे गाना दिया प्रीतम ने, मैं नीचे उतरा वहां से लेके, एक कॉफी शॉप में बैठा, मैंने गाना लिखा, अनुराग को भेजा, अनुराग बसु, उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि जा ऊपर जाके रिकॉर्ड कर दे।
0: थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट। तो गाइज, आई हैव स्वानंद किरकिरे जी, द ग्रेट लिरिसिस्ट, एक्टर, राइटर हिमसेल्फ, कंपोज भी कर रहे हैं आजकल, मैं आपको बताती हूँ। और जैसा कि इन्होंने कहा कि आला बर्फी इन्होंने खटाक से बना लिया था, तो चलो यार, मोहित चौहान की आवाज में ये गाना सुनना तो बनता है। लेट्स हियर दिस आउट। और बहुत सारे सवाल मुझे पूछने हैं लिरिसिस्ट लोगों से, सारे पूछ डालूंगी आज। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आँखों ही आँखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, कोई खुस खुस खुस खुस, ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़, ओए बुड़ बुड़ बुड़।

0: Hollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग

0: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन.
3: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से.
2: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ. डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड. तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में.
4: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो.
5: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
6: बहुत कुछ होगा.
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मुझे ऐसे डिक-चिक बीट्स वाले गाने या फ्लैशी लोग पसंद हैं, या क्या मुझे सिंप्लिसिटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है? आपको क्या ज्यादा अट्रैक्ट करता है? अभी आपने ये गाना सुना खला फिल्म से शौक, स्वानंद किरकिरे ने ये गाया है और लिखा है वरुण ग्रोवर ने। एंड यू नो, मुझे हमेशा लगता है कि तृप्ति डिमरी जो कला फिल्म में लगी है ना, द ब्यूटिफुल सिंपल इनोसेंट, वो मुझे कहीं नहीं लगी। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, ब्यूटिफुल शी लुक्ड हियर।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। वेल, बातचीत चल रही है स्वानंद किरकिरे से, तो एक चीज और पूछनी बनती है। सर, मुझे प्लीज ये बताएं ना, आप गाते भी हैं, लिखते भी हैं, ये गाना आपने गाया है, तो व्हेन यू आर सिंगिंग और परफॉर्मिंग और राइटिंग, क्या चीज ज्यादा मायने रखती है, सिंप्लिसिटी या एकदम ऐसे डेप्थ वाली भारी शब्द? और कैसे आप ये एनालाइज कर पाते हैं कि कहां बिल्कुल सिंप्लिसिटी चलेगी या कहां डेप्थ या भारी भरकम शब्द चलेंगे? हाउ डू यू डू दैट?
2: नहीं देखिए, सिंप्लिसिटी ही वर्क करती है। डेप्थ भी सिंपल भाषा में ही अगर आप बोलेंगे तो ही डेप्थ निकल के आएगी। जीवन बहुत जटिल है, तो जीवन को जब आप सिंपल तरीके से समझाते नहीं है तो लोगों को उसका मर्म नहीं पहुंचता। सिंप्लिसिटी इज द कोर, भले कितनी भी गहरी बात हो, आपको अगर सिंपल तरीके से कहते आए, मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते की जड़ है। इट्स अ सिंपल थॉट, बट इट टच मी व्हेन आई रोट इट, नो इट्स लाइक आई ओ या नाइस।
0: देखिए, ये बात बिल्कुल प्यारी कही आपने कि लाइफ इज ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड, कितना जटिल है जीवन, तो हम शब्दों को जटिल क्यों बनाएं? और शायद इसलिए कहते हैं कि बनावटी ना ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, सिंपल क्लासिक हमेशा टिकता है। तो देखिए स्वानंद किरकिरे साहब, मेरे उल जुलूल सवालों के जवाब तो दे ही रहे हैं जो मेरे मन में उमड़ घुमड़ करते हैं। साथ में ये यहाँ बैठे हैं, तो मैं कैसे हो सकता है कि इनसे ये ना बोलूं कि प्लीज थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे साथ। तो इसी सिलसिले में, यू नो, लेट्स गेट ऑन टू सिंगिंग अ सॉन्ग विद स्वानंद जी। और ये एक वन ऑफ माय फेवरेट्स अगेन फ्रॉम यू, ये गाना है जो आपने गाया है, लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य जी ने। चलिए ना, प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ गुनगुनाइए। उमर

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ।
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।
2: रख, रख।

0: चलाओ फ्रॉम द फिल्म रंग दे बसंती, मोहित चौहान की आवाज में एन इंटेंस सॉन्ग, राइट? मैं ना कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं दुनिया में जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, ठीक है, दे कैन नॉट एक्सप्रेस द लव या अफेक्शन या जता नहीं पाते, लेकिन ये जो हमारा खून है, ये जो इतने उबाले मारता है यार, गुस्सा तो हम सबको एक्सप्रेस करना आ जाता है, लेकिन प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों है?
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। सो द मैन हिमसेल्फ स्वानंद किरकिरे मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने कहा कि एज अ लिरिसिस्ट भी उनको रियल लाइफ में मुश्किल होती है प्यार जताने में, एक्सप्रेस करने में। प्लीज बताए ना मुझे, आपको क्या लगता है इस बारे में स्वानंद जी, क्यों हमें प्यार दिखाना या जताना नहीं आता?
2: सही बात है, हम लोगों को, हमारे और खासकर हम सभी लोगों को प्यार दिखाना नहीं आता, प्यार जताना नहीं आता। तो जब हम गाने के थ्रू कोई बात बोलते हैं तो वो बात पहुंचती है लोगों तक, और मैं भी वही हूँ, मुझे प्यार नहीं एक्सप्रेस करना आता असली जीवन में, इसलिए मैं घुमा घुमा के बातें करता हूँ और यहाँ वहाँ के गाने बनाता उल्टे सीधे।
0: ठीक है, टेढ़े मेढ़े शब्दों में ही सही, कहीं ना कहीं आप जता रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो जो वक्त था ना जब हम लेटर राइटिंग करके एक्सप्रेस करते थे या एक चिट में छोटा सा मैसेज देके चले जाते थे, अब कहाँ वो व्हाट्सएप पे इमोजी के जरिए एक्सप्रेस कर पा रहा है कोई। सिखाना पड़ेगा ना प्यार जताना, तुम सिखा दो। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
1: Hello,
2: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
1: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबीर सिंह बोल रहा हूँ.
1: हाँ जी.
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
1: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
2: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे, 3 लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
1: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
1: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
1: इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई है.
2: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं?
1: नहीं, मत सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार होगा
2: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
1: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
2: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
1: हाँ बताइए
2: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
1: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
1: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है.
5: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है.
4: हाफ पे बैक मतलब?
5: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली.
4: वाओ, किस किस चीज पे?
5: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज.
4: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी.
5: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की. हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा. लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
6: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची 1.
11: इट्स हॉट.

0: सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। कितने सारे हमारी जिंदगी में रिश्ते होते हैं ना, लेकिन जो सबसे खास होते हैं हम सबसे ज्यादा उन्हीं को हर्ट करते हैं, उलझा लेते हैं, सुलझाते नहीं है हम। ये जो सुलझाने वाले शब्द है ना, ये सिर्फ गानों में आ रहे हैं मुझे लग रहा है।
1: मिर्ची कैफे,
2: मैं हूँ स्वानंद गिरगिरे और आप मुझे सुन रहे हैं मिर्ची कैफे पर पारुल के साथ।
0: थैंक यू सो मच कि आपने ये वक्त निकाला मेरे लिए स्वानंद जी। मैंने सुना है आप सिंगल्स भी बना रहे हैं, नए गाने लेकर आ रहे हैं, प्लीज उनके बारे में बताइए।
2: ये बहुत इंडिपेंडेंट गाने बनाने की मैंने जो एक पहल शुरू की है, फिल्म के गानों के अलावा जो इतर गाने बनाए हैं, मैंने 6 गाने बनाए। शोरगुल नाम का एक गाना है, मेरी जान नाम का एक गाना है, ऐसे नाम को देखिए, चांद आवारा, तो उस सीरीज में मैंने ये मेरे साथ चल बनाया है और ये बिल्कुल ही अपने लिए बनाया है, अपने हिसाब से बनाया है और खुद कंपोज भी किए हैं ये सारे गाने, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अगर ये लोगों को अच्छे लगते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यार आपके काम को पूरी स्वीकृति मिली है।
0: तो मुझे लगता है मैजिक यही लाए करता है कि कैसे आप जीवन की रियलिटीज को जो आप जी रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, उनको शब्दों में पिरोने का काम जो आप करते हैं माइंड ब्लोइंग करते हैं सर। गाते भी आप कमाल का है, तो आप प्लीज एक काम करिए मेरे लिए, जो आपका नया गाना आ रहा है इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग कॉल्ड मेरे साथ चल, ये मैं आज मिर्ची कैफे पर मैं सुनाने वाली हूँ सभी मेरे लिसनर्स को। लेकिन उसके पहले ये गाना आपको मुझे सिखाना है, ठीक है? चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा ऐसे निभा पाऊं थोड़ा बहुत। प्लीज अब मैं आपके साथ ये गाना गाऊंगी और फिर हम सारे लिसनर्स को ये आपका लिखा हुआ कंपोज किया हुआ नया गाना सुनाएंगे। लेट्स डू दिस सर।
2: ठीक है।

0: कर।
1: बहुत सुंदर। मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ ही गाओ।
0: मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। बहुत प्यारा, दिल खुश हो गया सर मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं मेरे साथ चल स्वरण जी का गाना। एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, अभी जाइएगा मत, आ रही हूँ वापस। इट्स ऑन।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: tickets. Don't miss out. Visit your nearest Lulu hypermarket and make your anniversary shopping extra special. Lulu hypermarket,
1: where the world comes to shop. अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स, रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
2: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
1: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
3: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
7: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: जैसे कश्मीर में पश्मीना बनता है ना, पश्मीना कितना एक्सपेंसिव होता है, कितना वैल्यूएबल होता है, कितना डेलिकेट वॉर्म और प्रेशियस होता है, वैसे ही मोहब्बत होती है। इसी फीलिंग को यू नो पिरोया गया है इस फिल्म में। द फिल्म वॉज कॉल्ड फितूर और ये गाना और इसका म्यूजिक कॉम्पोजिशन लिरिक्स सब ओवरऑल वही एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं देते हैं। यार म्यूजिक ही हमें ओवरऑल ऐसा एक्सपीरियंस देता है कि हम कहीं ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी गाना आपके दिल को पहुंचा है ना, या कोई लिरिक्स जो आपके दिल को छुए हैं और आप कहीं और चले गए, जो लाइफ में चल रहा था उसको भूल कर एक सेकेंड के लिए भी, तो म्यूजिक है ना फिर मेडिटेशन। मेडिटेशन भी तो यही करता है।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और खूबसूरत गानों की और खूबसूरत म्यूजिक की और खूबसूरत लिरिक्स की ये जादूगरी होती है कि ये हमें कहीं और ले जाता है, भाग जाता है हमारा मन खटाक करके और हम कहीं पहुंच जाते हैं। ब्यूटी ना, तो चलो थोड़ा सा ये वाला मूड ब्रेक करके आपको दूसरे मूड की तरफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुनिधि चौहान जी को बुलाते हैं गाना गाने के लिए हमारे लिए। नहीं, मेरे साथ बात करने नहीं आ रही है वो, बट द नेक्स्ट ट्रैक उनकी आवाज में आप सुनेंगे। मैं हूं पारुल, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टाग्राम पे paruls.world के नाम से। लेट्स कनेक्ट यार, बताओ मुझे कि कैसा लगा आपको ये शो। और जब तक ये गाना सुन रहे हो, डू गो टू इंस्टाग्राम एंड कनेक्ट विद मी paruls.world के नाम से मैं आपको मिलूंगी। प्लीज मुझे बताते रहा करो आपको कौन सा गाना अच्छा लगा इस शो पे, कौन सा गाना सुनना चाहते हो, डू लेट मी नो। पर अभी शो खत्म नहीं हुआ है, वापस आ रही हूँ थोड़ी देर में। सुनो तब तक इस गाने को, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: आई लाइक दैट सॉन्ग।

0: आई फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: ब्यूटीफुल गाने आपके लिए लेकर आती हूँ मैं मिर्ची कैफे शो पर। ये मेरा काम है और मेरा नाम है पारुल।
1: मिर्ची कैफे।
0: कृष्णा सोलो की आवाज में अभी आपने सुना रंग रेज, अमेजिंग गाना नहीं? अच्छा, आज क्योंकि स्वानंद जी यहाँ पर थे मेरे साथ, बातचीत करी हमने, एक छोटा सा पीस ऑफ एडवाइस मैं अभी यहाँ पर आपको देकर जाना चाहती हूँ आज, बिफोर आई लीव यू। अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपने नोटिस की है, आपने कीड़े देखे होंगे मैंगोज में, आपने वर्म्स या कीड़े देखे होंगे एप्पल्स में, पर क्या आपने कभी नींबू में देखा है कोई कीड़ा? नहीं ना। सो ऑलवेज रिमेम्बर, डोंट बी टू स्वीट टू द रॉन्ग पीपल, क्योंकि फिर वो ज्यादा स्वीट होना डायबिटिक बन जाता है हमारे नेचर के लिए और वो हमारे लिए ही अच्छा नहीं होता फिर, समझ रहे हैं आप? अरे यार, जो लोग आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो, तारे गिनते हुए छोड़ दो उनको। अरे आगे बढ़ो यार, लाइफ में चिल करो, बस अपने आप को खुश रखो, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड बहुत सारा ढेर सारा प्यार आप सबको, अपना अपना ख्याल रखो, अपने अपनों का ख्याल रखो। डू कनेक्ट विद मी ऑन 7045983983 या फिर इंस्टाग्राम parul.world। मुझे बता सकते हो कैसे गाने लगे आपको आज के शो के, कैसी बातचीत लगी, आपको कौन सा गाना सुनने का मन है इस शो पे, प्लीज डू लेट मी नो। और जितने भी लोग मुझे डीएम्स करते हैं ना, अब मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा इधर उधर एक दो दिन शायद लेट हो जाती हूँ, पर रिप्लाई सबको करती हूँ। सो या प्लीज डू राइट टू मी। चलती हूँ अभी यहाँ से, सायोनारा, टाटा, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं। फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। आदाब, कैसे हैं आप? और कई बार जब कोई भी रिलेशनशिप खत्म हो रही होती है ना, कोई दोस्ती खत्म हो रही होती है, प्यार खत्म हो रहा होता है, कुछ ऐसा खत्म जब हो रहा होता है, तब इंसान का ना बड़ा अजीब सा एक चेहरा देखने को मिलता है, बड़ा पत्थरनुमा, बड़ा हार्ड सा एक चेहरा देखने को मिलता है। शायर लखनवी साहब का एक शेर पढ़ा मैंने और वो सारे चेहरे अचानक से सामने आ गए। कहते हैं कि कितने दिल थे जो हो गए पत्थर, कितने दिल थे जो हो गए पत्थर, कितने पत्थर थे जो सनम ठहरे। आय हाय हाय हाय हाय, क्या बात है। और सच बात है, मोहब्बत से गुजरने के बाद कई दिल पत्थर बन जाते हैं जब वो मोहब्बत पूरी नहीं होती। लेकिन मेरे ख्याल से असली जादू तो है दिल को दिल बनाए रखने का, बावजूद इसके कि मोहब्बत पूरी ना हो। कितने दिल थे जो हो गए पत्थर, कितने पत्थर थे जो सनम ठहरे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
0: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है?
1: हाफ पे बैक मतलब?
0: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
1: वाओ, किस किस चीज पे?
0: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
1: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
0: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप। Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Cut, cut.
3: Who that?
2: Jassi.
3: Jassi? Kaunsi wali Jassi?
2: Jassi who has come, auntie ji?
3: Cut, cut. Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1.
5: Mirchi.
4: It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और इन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था।
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल फिर से और वक्त है आपको रूबरू कराने का हमारी आज की शायरा मीना कुमारी जी से। बिल्कुल आई एम श्योर आप सब मीना कुमारी जी को जानते होंगे। भारत की एक मशहूर हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री थीं और साथ ही साथ एक शायरा भी थीं। इन्हें खासकर जो दुखांत फिल्में होती हैं उनसे याद किया जाता है। उनकी जो भूमिकाएं रहती थीं ऐसी पिक्चर्स में बड़ी खूबसूरत रहती थीं और उन्हीं का एक शेर आज आपको नज़र करने जा रहा हूँ मैं। कहती हैं कि आगाज़ तो होता है अंजाम नहीं होता, आगाज तो होता है शुरुआत तो होती है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। वाह जी वाह क्या बात है। मतलब हाय मील खत्म करने के लिए जैसे डेजर्ट जरूरी है वैसे ही उसका नाम जरूरी है, वरना कहानी अभी चल रही है, वरना कहानी अभी बाकी है। आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। मीना कुमारी नाज। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेयरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
6: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
5: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेयरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेयरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।

0: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

शेर याद आता है, क्योंकि ये लव्स हो सकता है नया आया हो, लेकिन ये भावनाएं तो हमेशा से ही एग्जिस्ट कर रही है ना। उमर अंसारी साहब लिखते हैं कि मुसाफिरों से मोहब्बत की बात कर लेकिन, मुसाफिरों से मोहब्बत की बात कर लेकिन मुसाफिरों की मोहब्बत का एतबार ना कर। क्या बात है, सच्ची बात है दोस्त। यही बात है कि मुसाफिर जो होते हैं उनका तो काम ही यही है ना, गुजर जाना। अब किसी गुजरने वाले शख्स से, किसी गुजरने वाले इंसान से दिल लगाओगे तो टूटेगा तो है ही। मुसाफिरों से मोहब्बत की बात कर लेकिन मुसाफिरों की मोहब्बत का एतबार न कर। स्टेडियम टू मिर्ची महफिल। और आपका भी ऐसा कोई किस्सा है क्या, जब आपको किसी मुसाफिर से मोहब्बत हो गई थी, या फिर आप ही वो मुसाफिर थे? अगर हाँ तो बताइए मेरे इंस्टाग्राम ताशी ऑन मिर्ची पर। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot. Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है. But really, tell us, how old were you when you made the song?
3: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में then I saw the little train coming out.
4: देखो

0: Now they call it's raining, it's raining, it's raining.
1: अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और बाबा ब्लैकशिप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
5: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
6: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
7: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल पर अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी नजर करे आपको आज का ताशी अनप्लग्ड। और ये जो गजल है गुलजार साहब ने लिखी है, जगजीत जी ने इसको अपनी आवाज दी है और मेरे ख्याल से वन ऑफ दोज गजल्स है मेरे जहन में जगजीत सिंह जी की, जिसने अपनी ऐसी छाप छोड़ी क्योंकि बहुत बचपन में सुनी थी मैंने, लेकिन रह गई यार, रह गई दिल के अंदर। दिस इज कॉल्ड शाम से आंख में नमी सी है।

आई हो और आपकी भी कोई फरमाइश हो तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं मुझे मेरे इंस्टाग्राम ताशी ऑन मिर्ची TASHI ऑन मिर्ची पर. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल. आपका ताशी है आपके साथ. इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और इमेजिनेशन तसव्वुर एक ऐसी जमीन है ना जो कि बहुत उपजाऊ है, उसमें जो असलियत में ना भी हो वो भी आप पैदा कर सकते हैं, उसके साथ भी आप जी सकते हैं। इमेजिनेशन में तो कुछ भी पॉसिबल है। तरकश प्रदीप साहब का एक शेर है, आपको नजर कर रहा हूं। कहते हैं कि बनाता हूं मैं तसव्वुर में उसका चेहरा मगर, तसव्वुर मतलब इमेजिनेशन, बनाता हूं मैं तसव्वुर में उसका चेहरा मगर हर एक बार नई कायनात बनती है। कई बार लोगों के साथ जिनके साथ हम इश्क में होते हैं, प्यार करते हैं, पूरी दुनिया होती है जो उनके साथ हम इमेजिन करते हैं, और जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ तो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। बनाता हूं मैं तसव्वुर में उसका चेहरा मगर हर एक बार नई कायनात बनती है। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirci, it's hot.
1: Mirci.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtua la burga. Mirci, burga. Burga.
3: हेलो हाँ जी बोलिए
4: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
3: आप बोलिए ना
4: कॉल आपने किया आप बोलिए
3: कॉल मैंने किया है हेलो
4: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
3: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
4: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
3: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
4: नींद में है क्या
3: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
4: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
3: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
4: तेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
3: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
4: हेलो
3: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
4: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
3: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
4: फोन नहीं कर रहा अभी
3: मैं देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गया मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
4: चप्पल
3: पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
4: क्यों आराम कर दिया तुम
3: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
4: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
3: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है
6: अरे रिलैक्स लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है
5: हाफ पे बैक मतलब
6: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली
5: वाओ किस किस चीज पे
6: रेडीमेड गारमेंट्स साड़ीज चूड़ीदार फुटवेयर लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज
5: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी
6: बिल्कुल वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो तो देर किस बात की हेड टू लूलू हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा लूलू वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप
7: हेलो शॉप्स Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
8: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ प्रॉफिट आएगा
7: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
9: काम को टाइम दो 25 घंटे काम करो डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा
7: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो
10: भाई क्या कर रहा है तू जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट
11: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची टेक योर पार्टनर विद अस नाउ योर बिजनेस विल गो वाओ कॉल नाउ 7070 7687

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर। किस्सा कॉर्नर
1: कि आप कताशी पलटे अपनी डायरी के सफे और कर दे आपकी नजर। कुछ बातें होती है ना जिनको भूल नहीं पाते आप, उनको बस आप पीछे वाले बर्नर पे रख देते हैं। गैस होती है ना जिसमें खाना पकता है, तो चार चूल्हे होते हैं जिनमें वाली जो गैस होती है उसमें आगे वाले दो चूल्हे हाई फ्लेम वाले होते हैं, पीछे वाले दो चूल्हे लो फ्लेम वाले होते हैं। तो आप दुख को ना ज्यादा से ज्यादा बस पीछे वाले दो चूल्हों पे रख सकते हो, लेकिन गैस से हटा नहीं सकते। कुछ दुख ऐसे होते हैं। फिराक गोरखपुरी साहब का एक बड़ा अप्रोप्रिएट बड़ा सटीक शेर है यहाँ पे, कहते हैं कि ए भूल न सकने वाले तुझको, ए भूल न सकने वाले तुझको, भूले न रहे तो क्या करें हम। और क्या यार, हर समय सोचते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे, और भूल तो बिल्कुल तो भूल नहीं सकते, है ना। कितनी ऐसी यादें होती हैं जिनको हम बस बैक बर्नर पे रखते हैं। ए भूल न सकने वाले तुझको, भूले न रहे तो क्या करें हम। Stay tuned to मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। और अगर ऐसी कोई याद है आपकी भी जो भुलाए नहीं भूलती, या फिर जिसको बैक बर्नर पे रख के बैठे हो सकता है शेयर करने में दिल हल्का हो जाए। ताशी और मिर्ची मेरा इंस्टाग्राम है, आ जाना वहां बात करते हैं। You know what I say? It's hot.

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, और जिसके जहन में जो चीज लैकिंग होती है ना, जिस चीज की जिसको भी कमी होती है, उसको हर जगह वही चीज दिखाई देती है, उसको हर जगह उसी चीज की प्यास तड़पाती है। बख्श लायलपुरी साहब का एक शेर है, कहते हैं कि दर्द हिजरत के सताए हुए लोगों को कहीं, दर्द हिजरत मतलब जो एग्जाइल में हो या फिर इमिग्रेशन जिनका हो गया हो, जो कि दूर हो, दर्द हिजरत के सताए हुए लोगों को कहीं साया दर भी नजर आए तो घर लगता है। साया दर माने दरवाजे का साया भी अगर नजर आए, मतलब हल्का सा भी उन्हें उम्मीद दिखे, तो वो उस उम्मीद में पूरी तरीके से अपने आप को कमिट कर देते हैं। दर्द हिजरत के सताए हुए लोगों को कहीं साया दर भी नजर आए तो घर लगता है। और ऐसे सताए हुए लोगों को जो साया दर समझ के आपके पास रुक जाएं, अगर कोई और सताए तब तो बुरा होगा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। It's hot.

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
4: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे। आई ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
3: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
0: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आप कताशी आपको मुखातिब कराए हमारे आज के लव्स कफस से। कफस का मतलब होता है, मानी होता है पिंजरा, कारागार, जाल, फंदा, है ना। और कफस का एक बड़ा ही बेहतरीन इस्तेमाल है राज इलाहाबादी साहब की गजल में। उसका एक शेर सुनाऊंगा मैं आपको जिसमें कफस मानी जाल, फंदा, पिंजरा, इसका बड़ा सटीक इस्तेमाल किया है। कहते हैं कि आशियां जल गया, गुलिस्तां लुट गया, हम कफस से निकल कर किधर जाएंगे। आशियां जल गया, गुलिस्तां लुट गया, हम कफस से निकल कर किधर जाएंगे। इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। क्या बात है, जब कहीं जाने के लिए जगह ही ना बची हो तो जेल से निकल के कोई इंसान कहां जाए। जेल से निकल के तो उसकी पूरी रियलिटी खत्म हो जाएगी ना। आशियां जल गया, गुलिस्तां लुट गया, हम कफस से निकलकर किधर जाएंगे। इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। प्यार भी ऐसी कैद होता है। आप अपनी सारी रिलेशनशिप्स बाहरी सब खत्म कर देते हैं, दोस्तों से रिश्ते नाते खत्म कर देते हैं, प्यार में डूब जाते हैं, और फिर प्यार से बाहर आते हैं तो कफस से निकल कर किधर जाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ। और अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी हो तो बिल्कुल शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम ताशी ऑन मिर्ची पर। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, और कुछ कुछ लोगों को ना दूर से देख के ऐसा लगता है कि यार इनके पास तो सब कुछ है, इनके पास तो जितना गिना जा सकता है उसके भी पार है, इतना सब कुछ है, इनके अंदर क्या कमी होगी। लेकिन निदा फाजली साहब ने इतनी खूबसूरती से यह जता दिया है कि दोस्त, जिस चीज की कमी होती है ना, उस इंसान को ही पता होता है जिसको वो कमी है। कहते हैं कि सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती है निगाहें, सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। वाह जी वाह, कितना खूबसूरत शेर है। और सच्ची बात है कि जिसके अंदर जिस चीज की कमी होती है ना, वो चीज उसको पता होती है, उसको खबर होती है, और सामने वाले को हमेशा ग्रास ग्रीनरी दिखती है दूसरी तरफ। लेकिन अगर वो उस शख्स के जूतों में कदम रखे तब उसको समझ आए कि मामला क्या है। सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती है निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, एंड यू नो व्हाट आई से,

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Murga, murga. Na fiind wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello?
4: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
3: हेलो।
4: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
5: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार, अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
3: वही मैं सुन रहा था, मतलब लगा।
4: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
3: हाँ जी।
4: कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: खट खट।
7: कौन है?
6: अज्जू।
7: अज्जू कौन?
6: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
7: खट खट, हु दैट?
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर। किस्सा कॉर्नर
1: कि आप कताशी सुनाए आज का किस्सा आपको जो आ रहा है असरारुल हक मजाज साहब की जानिब से। जोश मलिहाबादी साहब सफर पर जा रहे थे, स्टेशन पहुंचे तो उनकी गाड़ी छूटने ही वाली थी। मजाज और दूसरे शायर उन्हें खुदा हाफिज कहने के लिए पहले से प्लेटफॉर्म पर रेलवे बुक स्टॉल के सामने खड़े हुए थे कि अचानक जोश साहब तेजी से मुस्कुराते हुए गुजर गए। इस पर एक शायर ने कहा, इतना अजीम शायर अगर किसी और मुल्क में होता तो आज उसके चाहने वाले कतार दर कतार स्टेशन पर उसको अलविदा कहने के लिए आते और हर शख्स अपने महबूब शायर से हाथ मिलाने की सआदत हासिल करता। मजाज ने बात काटते हुए कहा, और इसी दौरान में शायर आजम की गाड़ी दूसरे स्टेशन तक पहुंच चुकी होती। आए हाय हाय, रियलिज्म का जो ये शायर छौंका लगा देते हैं ना कभी कभी रोमांटिसिज्म की इस पूरी गाड़ी के बीच में, मजा ही आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। बहरहाल एक से बढ़कर एक गजलें और नगमे लाइन से लगा रखे हैं आपके ताशी ने आपके लिए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: दवे
6: दवे कौन?
5: The way you love me, I हाय मर जावा।
6: खट खट, who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और एक बुरी आदत है मेरी, और बुरी क्या, सही भी कह सकते हैं, कुछ लोग के नजरिए से सही भी होगी, कुछ लोग के नजरिए से बुरी भी होगी। आदत है बहरहाल कि जहां सब जा रहे होते हैं ना, उस जगह को मेरा दिमाग पता नहीं क्यों एकदम हटा ही देता है, जाता ही नहीं है वहां। जब पता था कि सब इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं तब वो नहीं किया है ना, जानबूझ के नहीं किया, बायो लेके नहीं किया है ना, तो वही बात है। और मुझे ना शकीब जलाली साहब का एक बड़ा ही सटीक शेर मिला इस पे। कहते हैं कि शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है, तारुफ माने इंट्रोडक्शन, शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। वाह जी वाह, बड़ा ही प्यारा शेर लगता है मुझे, और मेरी पर्सनालिटी को तो भाई सच में पूरे तरीके से डिस्क्राइब करता है। शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। आप भी ऐसे ही हैं क्या, थोड़े थोड़े से, कि उस रास्ते से बच के चलते हैं जो आम हो जाए? और ऐसा कौन सा रास्ता है जो आपने छोड़ा क्योंकि वो आम हो गया था, बताइए मुझे मेरे इंस्टाग्राम ताशी ऑन मिर्ची पर। आपका ताशी आपके साथ, ऑफ कोर्स मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग

0: है।
1: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
4: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
5: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाँ जी, एंड जस्ट लाइक दैट वक्त हो चला है मेरे जाने का।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी था आपके साथ, एंड इट्स टाइम फॉर मी टू गो। लेकिन जाने से पहले आपको पता ही है, ताशी अनप्लग्ड पेश करना तो मेरा बनता ही है। और ये जो गजल है, गुलजार साहब ने इसे लिखा, जगजीत जी ने अपनी आवाज दी। इट्स कॉल्ड शाम से आंख में नमी सी है।

और अब तो रात आ गई है। अगर आपकी भी ऐसी कोई फरमाइश हो तो आप लिख भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ताशी ऑन मिर्ची पर। आपका ताशी था आपके साथ मिर्ची महफिल पर। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इट्स हॉट।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

अरे टोली बना के निकले ग्वाले करने को हुड़दंग, गोविंदा के दिन सब हो गए हैं गोविंदा के संग। अरे समझे,

Man. Barrel. Yeah. भाई तेरा बस लगता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

बच्चा बुरा करते हाँ, पलक फड़के आए के दिल धड़के उमर की उठा।